मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 मई सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह की 5:56 और 49 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है।

0: पढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है राइजोबियम कल्चर एवं उसकी उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: आज हम राइजोबियम कल्चर एवं इसके उपयोग की चर्चा करेंगे। किसी भी फसल से अधिकाधिक उत्पादन लेने में रासायनिक उर्वरक एवं कार्बनिक खादों का प्रमुख योगदान रहता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण एवं रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से बढ़ते मिट्टी में प्रदूषण के कारण आज जैव उर्वरकों की उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जैव उर्वरक न तो महंगे होते हैं और न मिट्टी में प्रदूषण ही फैलाते तथा काम वही करते हैं जो हमारे उर्वरकों द्वारा होता है। जैव उर्वरक वैसे तो कई तरह के हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख एवं ज्यादा प्रचलन में है वह है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त टीका है जो कि वायुमंडल से नत्रजन को लेता है, इसका कि पौधे उपयोग करते हैं।

0: फसलें अनेक तरह की होती, लेकिन जो दलहनी फसलें हैं इनमें ही यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाए तो यह लाभकारी रहता है। अगर प्रभावी राइजोबियम कल्चर का प्रयोग सही तरीके से किया जाए, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की 80 से 90% आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कौन सी फसल के लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर प्रयोग करना है इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राइजोबियम कल्चर कई तरह के होते हैं और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए जिस फसल की बुआई करना हो उसी का राइजोबियम कल्चर प्रयोग करना चाहिए। अगर मूंग की बुआई कर रहे हैं तो मूंग का राइजोबियम कल्चर, और यदि उड़द की बुआई कर रहे हैं तो उड़द का राइजोबियम कल्चर। 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। अगर 50 किलोग्राम बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है तो 5 पैकेट कल्चर की आवश्यकता होती है। जब इसका प्रयोग करना हो तो सबसे पहले 0.5 लीटर पानी लेना चाहिए, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलकर उसे गर्म कर लेते हैं। अब जब घोल ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट मिला देते हैं। फिर इसे 10 किलोग्राम बीज पर तैयार कल्चर के घोल को हल्के हाथों से मिला करके और फिर उसको साये में फैला देते हैं। ऐसा करने से बीज थोड़ा भर हो जाता है और बुआई में आसानी होती है। जब बीज भर हो जाए तो इसे बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इनके सही प्रयोग से जहां बीज का जमाव अच्छी तरह होता है वहीं दूसरी ओर फसल की उपज भी बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता खराब नहीं होने पाती। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते समय कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे खरीदते समय देख लें कि कहीं उसकी तिथि बीत तो नहीं गई है। अगर उसकी तिथि बीत गई है तो उसे न खरीदें। अगर घर पर ही रखे पुराना हो गया है तो उसे इस्तेमाल न करें। इसे प्रयोग करने से केवल परिश्रम की ही बर्बादी होगी। राइजोबियम कल्चर को किसी सरकारी केंद्र या विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। उड़द के लिए उड़द का, मूंग के लिए मूंग का और सोयाबीन के लिए सोयाबीन वाला ही राइजोबियम कल्चर इस्तेमाल करें। राइजोबियम कल्चर को कभी भी ज्यादा धूप या ज्यादा ठंडी एवं सूखी जगह में न रखें, क्योंकि ऐसा होने पर इसके छोटे छोटे जीव मर सकते हैं। अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लिए हैं तो बीज को भर करने के लिए थोड़ा फैलाना पड़ता है। यह कार्य साये में ही करना चाहिए, न कि धूप में। और जैसे बीज भर हो जाए उसकी बुआई तुरंत कर देनी चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। बुआई का कार्य प्रातः 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय था राइजोबियम कल्चर एवं इसकी उपयोगिता। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है।

समय न कभी अच्छा होता है और न कभी बुरा, वो सबके लिए एक समान होता है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति अपने कर्मों से बनाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और मालिनी अवस्थी की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है क्षमा।
1: नगर में होकर कहीं जा रहे थे, संयोग से उनके पैर से एक व्यक्ति का अंगूठा कुचल गया। उसने क्रोधित होकर महात्मा जी को इतना मारा कि वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत उपचार करने के बाद महात्मा जी किसी प्रकार होश में आए। तब उनके शिष्य ने

0: पूछा, आपको इतना किसने मारा? महात्मा जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, उसी ने जिसने मेरी इतनी सेवा की है। सत्य, क्षमा, सरलता, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वथा त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर व्यवहार और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर कर उन्हें आह्लादित करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं और परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं और अपने से शत्रुता करने वाले को भी क्षमा दान देते हैं। क्षमा ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, क्षमा ही सबसे बड़ा सुख है, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट रूप को जानता है, वो सब कुछ क्षमा कर सकता है। लोकोपकार है और क्षमा ही शांति है। क्षमावान मनुष्य इस लोक में सम्मान और परलोक में शुभ गति पाते हैं। क्षमा विद्वान का भूषण और शांति ज्ञान का सर्वस्व कहा गया है। आचार्यों ने क्षमा के अंतर्गत विनय, शील और दया आदि गुण माने हैं। भृगु ने हरि के वक्षस्थल पर लात मारी थी, परंतु उन्होंने भृगु से कहा, महाराज आपके पैर में बड़ी चोट आई होगी, मुझे क्षमा करें। यह है क्षमा की पराकाष्ठा। एक प्रसंग है, कागभुजुंड जी एक बार शिव मंदिर में जप कर रहे थे। उनके गुरु आए, उन्होंने मत्सरतावश उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो क्षमा की मूर्ति थे, उन्होंने तो कागभुजुंडी को क्षमा कर दिया, परंतु शिव जी कैसे क्षमा करते, उन्होंने उन्हें दंड दिया। क्षमा सज्जनों का भूषण है। जो कार्य तलवार द्वारा संभव नहीं, वो क्षमा द्वारा संभव हो जाता है। ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए गए, परंतु उन्होंने सूली देने वालों को क्षमा कर दिया। सुकरात को विषपान करना पड़ा, परंतु उन्होंने भी विष देने वालों को क्षमा दान दिया। वास्तव में क्षमा वो मंत्र है जिसके अभाव में जीवन रूपी यंत्र बेकार हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आज का विषय था क्षमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय है दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, IMS BHU। तो आज हम चर्चा करेंगे दूषित जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। दूषित जल से हैजा, टाइफॉइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, GRDSS जैसी बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज मुख्यतः रिहाइड्रेशन, माने कि आपको समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है, सॉल्ट्स लेने हैं, एंटीबायोटिक दवाएं, जैसे कि हैजा या टाइफाइड के केस में होता है एंटीपैरासिटिक दवा, अगर वो अमीबियासिस है या GRDSS है, और सपोर्टिव केयर से किया जाता है। गंभीर मामले में तुरंत डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैजा के बारे में, जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरे। उसका मुख्य लक्षण है पानी जैसा दस्त, तेज दस्त का होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, माने शरीर से एकदम पानी की कमी हो जाना, कमजोरी हो जाना, और उसमें खास बात होती है कि सूप जैसी मोशन होती है, तो एकदम सफ़ेद पानी जैसा दस्त होना। उसका प्रमुख इलाज है समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी लें, ORS का घोल पिए। अगर आप बिल्कुल भी मुंह से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसके लिए

फ्लूड लगवा सकते हैं जो कि अस्पताल में या किसी कंपाउंडर या किसी क्लिनिक में ही संभव है। एंटीबायोटिक्स भी इसमें अच्छा खासा इसका रोल है। हम दूसरी बीमारी है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे, वो है टाइफाइड। काफी आम बीमारी है, काफी लोगों को इसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। कई बार लोग कुछ जांच करा के आते हैं विडाल, जो कि हर बार पॉजिटिव आ जाता है। तो एक चीज आप विडाल के बारे में जान लीजिए कि वो किसी भी बुखार में पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए अपने मन से इसके लिए दवा न लें। तो चलिए हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसमें कि तेज बुखार, पेट दर्द व कमजोरी हो। इसमें बुखार आमतौर नॉर्मल दवाइयों से भी नहीं जाता है। अगर बहुत तेज बुखार हो रहा है तो टाइफाइड एक बहुत प्रमुख बीमारी हो सकती है जो आपको इलाज कराना है। इसका मुख्यतः इलाज एंटीबायोटिक से होता है, और अगर आप उल्टी कर रहे हैं या फिर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको ORS या IV फ्लूड की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी बीमारी है पेचिस, जो कि शिगेला या अमीबा नाम पैरासाइट से होती है, जिसमें कि पैखाने में खून आना, म्यूकस आना, दस्त होना, पेट दर्द होता है। तो इसमें भी इलाज जो है मुख्यतः एंटीबायोटिक्स है, और अमीबा के लिए भी आपको एंटीबायोटिक लेना है, जिसके लिए कि आप डॉक्टर से परामर्श करके इसका इलाज कर सकते हैं। और एक और आम बीमारी है हेपेटाइटिस ए या ई, माने पीलिया, जिसे हम लोग जानते हैं पीलिया के रूप। तो ये एक वायरस के द्वारा होता है, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है। इसमें आपको शुरुआत में आपको थकान लगेगा, पेट में दर्द लगेगा, उल्टी जैसा मन लगेगा, हो सकता है उल्टी भी हो जाए, और साथ में आपको कुछ दिनों बाद पीलिया दिखने लगेगा आंखों में। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन इसमें आराम, पोषण और हाइड्रेशन थेरेपी ही काम आती है। और ये बीमारियां चूंकि अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या किसी भी एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं, कोई दवा भी नहीं ले पा रहे हैं, और बुखार हो रहा, या फिर आप बेहोशी होने लगे, पेशाब का कम होना, ऐसा अगर कुछ होता है या कहीं से ब्लड आ रहा हो जो रुक ना रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये लिवर फेलियर भी हो सकता है इसमें। हालांकि ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये होता है, तो इसलिए आप डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। इसके बाद अगली बीमारी है जियार्डियासिस, जिसमें कि एक परजीवी होता है जिसका नाम है जियार्डिया, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। इसमें लंबे समय तक दस्त होता है, पेट फूल जाता है, और फिर वही आपको कमजोरी लगने लगेगी अगर आपको दस्त बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो इसका भी इलाज एंटीबायोटिक है, जो अगर जांच के बाद अगर आपके जांचों में अगर जियार्डिया दिखाया जाता है तो आप इसको दवाई ले सकते। फिर हम अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरोडेसिस। ये भी एक परजीवी की वजह से होता है, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरोडियम, जिसमें कि पानी जैसा दस्त होता है और कमजोरी होती है।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। विशेषज्ञ थे डॉक्टर विनोद कुमार।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर

लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे रविंद्र साठे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे वायलिन वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर आरपी शास्त्री। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:45 पर आप सुनेंगे मुराद बानो का उप शास्त्रीय गायन। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे बेगम अख्तर की गाई गजलें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे राम शंकर की गाए गीत।

गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी में, शाम 7 बजे शाम 7:45 पर रसरंग में, शाम 6:10 और सुबह 10 बजे छनकार में। स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत धर्मेंद्र कुमार गुप्त का काव्य पाठ आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम लेकर आएंगे शाम 6:30 से, जिसमें अन्य कार्यक्रमों के साथ श्रोता सुनेंगे अमरेश कुमार पांडे के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे सुबह 9:50 और दोपहर 1:45 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात, यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। बच्चों के लिए कार्यक्रम नन्ही दुनिया हम लेकर आएंगे शाम 5 बजे से, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा स्क्रीन से बनाए दूरी। गीतांजलि ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 से। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया आपके लिए हम लेकर आएंगे दोपहर 1:15 से, जिसमें गीत संगीत के साथ आज की बातचीत का विषय होगा मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से कैसे बचें। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी। कहकसा कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12 बजे। दिन 11 बजे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइस का प्रसारण किया जाएगा। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे से।

श्रोताओं, एक बार आपको फिर से बता दें कि रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे वायलिन वादन, कलाकार होंगे डॉक्टर आरपी शास्त्री। इसी कार्यक्रम में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे मुराद बानो का उप शास्त्रीय गायन। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: गतम सूचीबद्धानां सप्तषष्ठ्यधिकद्विशतोत्तरैकसहस्रं यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

है कि ईमानदारी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। ये रिश्तों में विश्वास पैदा करती है, जीवन में पारदर्शिता लाती है, साथ ही व्यक्ति की वास्तविक शक्तियों और प्रतिभाओं को जागृत करती है। बेईमानी ने कभी किसी रिश्ते को बढ़ने नहीं दिया और बहुत सारी समस्याएं पैदा की वो अलग से, लेकिन ईमानदारी एक ऐसी आदत है जो हर किसी को सुख और शांति देती है। हाँ, ईमानदार होने के लिए साहसी होने की आवश्यकता है। जो ईमानदार होता है वह समाज में सम्मानित और विश्वसनीय होता है। हालांकि आज तक कोई भी ऐसा ठोस तरीका नहीं ढूंढा जा सका है जिसके माध्यम से ईमानदारी की जांच की जा सके, लेकिन इसे काफी हद तक महसूस किया जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति आसानी से समाज के लोगों का विश्वास जीत लेता है, लेकिन असल चुनौती होती है उस विश्वास को हमेशा कायम रखने की। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। बनारस बदलते डिजिटल परिवेश में ईमानदारी के उदाहरण और मानक भी बदल रहे हैं। आज यदि आप किसी के घर जाते हैं और उसके बिना पासवर्ड के मोबाइल को देखते हैं तो उसे ना खोलना भी ईमानदारी है। यदि कोई अपनी गैलरी में आपको कोई फोटो दिखा रहा है तो उस फोटो के आगे पीछे ड्रैग ना करना भी ईमानदारी है। यदि कोई आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उसके कोड को डालते वक्त मुंह घुमा लेना भी ईमानदारी है। ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त सही सलामत मिले चीज को सही सलामत बताना भी ईमानदारी है। किसी के पर्सनल फोटो या वीडियो का AI के माध्यम से दुरुपयोग ना करना भी ईमानदारी है। बिना अनुमति किसी के व्यक्तिगत डेटा, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग न करना और उसे लीक होने से बचाना भी ईमानदारी है। फेक न्यूज को आगे न बढ़ाना भी ईमानदारी है। किसी व्यक्ति से डिजिटल माध्यम से गलती से पैसे मिल जाने पर उसे बिना लालच के तुरंत सही व्यक्ति को लौटा देना, ये डिजिटल ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके साथ ही साथ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फिल्मों या संगीत का उपयोग करने की बजाय हमेशा असली वर्जन खरीदना और क्रिएटर्स की मेहनत का सम्मान करना, ये बौद्धिक ईमानदारी की निशानी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि ऑनलाइन खरीदे गए सामान को उपयोग करके वापस करने की आदत में सुधार करना भी ईमानदारी कहलाती है। और ऐसे तो बनारस हमारा पुराना सिद्धांत है कि न ऊधो का लेना न माधो का देना, दुई दिन का मेला है, हंसा फिर अकेला है।

शंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में BLTD फिट और एक्टिवेट करने को लेकर शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक IAS और 19 PCS अफसरों के तबादले किए हैं। PCS अफसर आलोक वर्मा अपर आयुक्त वाराणसी और सृष्टि धवन को मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि करीब 10 दिन पहले ही आलोक कुमार वर्मा का स्थानांतरण मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर के पद के लिए हुआ था, लेकिन शासन ने उनका स्थानांतरण रद्द करते हुए अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। ADM सिटी रहते हुए आलोक वर्मा ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। इधर 2 दिन पहले नवागत ADM सिटी राजेश कुमार ने भी कार्यभार संभाल लिया है। बनारस देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के तहत पहले चरण में मकान गणना की शुरुआत शुक्रवार को विश्वनाथ धाम से हुई। सहायक नगर आयुक्त मृत्युंजय नारायण मिश्र के नेतृत्व में पहुंची नगर निगम की टीम ने धाम को नगर के पहले भवन के रूप में अंकित किया है। इसके बाद एनिमेटर शहर से गांवों तक हर घर में घर घर पहुंचकर मकानों का ब्यौरा जुटाने में लग गए हैं। इस बार यह जनगणना पूरी तरह हाईटेक है। पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित हो रही है, जिससे डेटा की सटीकता और पारदर्शिता बनी रहेगी। जनगणना के अंतर्गत भौतिक रूप से भवनों की गणना से पूर्व डिजिटल या ऐप और वेबसाइट के जरिए भी यह गणना हुई। 7 से 21 मई तक चले स्वयं जनगणना में 88,000 लोगों ने भागीदारी की है। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न संभ्रांत जनों ने डिजिटल जनगणना में स्वयं डाटा फीड किया और अब इनके डाटा का कर्मचारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। बनारस पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सुगम यातायात के लिए शुक्रवार को लहरतारा मोहनसराय मिर्जा मुराद और कछमा रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध स्टैंड सड़क किनारे खड़ी बसों ट्रकों और अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित यातायात बर्दाश्त नहीं है, इसमें तत्काल प्रभाव से सुधार करना जरूरी है। बनारस प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सूरज लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं। शुक्रवार को तापमान में गिरावट हुई, लेकिन तपिश से राहत नहीं मिली। दिन में ऐसा लग रहा था जैसे कि आग की भट्टी के पास लोग बैठे हों। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार यानी आज से अगले 4 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। उसके बाद लू से राहत के संकेत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वा हवा चलेगी और तब उमस बढ़ेगी। शुक्रवार सुबह तेज धूप निकली थी, दिन चढ़ते ही तापमान बढ़ने लगा था। और इस प्रचंड गर्मी से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। उनकी सेहत पर यह गर्मी भारी पड़ रही है। अस्पतालों में डायरिया, सर्दी जुखाम और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खास करके छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन और संक्रमण की शिकायतें अधिक मिल रही हैं। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के बाल रोग विभाग में 18 बेड हैं। यहां शुक्रवार को डायरिया के 12 बच्चे भर्ती थे। पांडेयपुर स्थित जिला अस्पताल के बाल रोग विभाग में डायरिया पीड़ित 9 बच्चों का इलाज चल रहा था। यहाँ रोज बड़ी संख्या में बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। मंडलीय अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CP गुप्ता ने बताया कि तेज गर्मी, दूषित पानी और बाहर खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बच्चों में डायरिया और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखें, दूषित पानी और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। सत्तू की लस्सी, दही की लस्सी, नींबू का पानी जैसी तमाम चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और डिहाइड्रेशन से बचना इस वक्त बेहद जरूरी है। और अब खबरें खेल जगत से। जनपद की राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कामना सिंह का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र अहमदाबाद के लिए हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से पूरे देश में आयोजित चयन प्रक्रिया के जरिए कामना सिंह सहित कुल 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर हमारी उनसे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और बनारस सब आइए, इसी के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जान लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस आज ही के दिन यानी 23 मई 1984 को
बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने 1 जनवरी 2019 से पहले और बाद के पंजीकृत सभी सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आम जनता, वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए निर्माताओं के पंजीकरण, पुराने मॉडलों में संशोधन और कुछ कंपनियों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया गया है ताकि डिवाइस फिट करने की प्रक्रिया आसान हो सके। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

की पांचवी और भारत की पहली महिला बनी। यह भी संजोग ही है कि कल यानी 24 मई को है इनका जन्मदिन। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपका जन्म हुआ था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से आपने पर्वतारोहण का कोर्स किया। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर 29,028 फीट की ऊंचाई पर सागर माथा यानी एवरेस्ट पर भारत का झंडा आपके द्वारा लहराया गया। वर्ष 1994 में बछेंद्री पाल ने गंगा नदी में हरिद्वार से कलकत्ता तक 2,500 किलोमीटर लंबे नौका अभियान का सफल नेतृत्व किया। हिमालय के गलियारे में भूटान, नेपाल, लेह और सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर समाप्त होने वाला 4,000 किलोमीटर लंबा अभियान भी आपके द्वारा पूरा किया गया। इस दुर्गम क्षेत्र में यह पहला महिला अभियान था। 1984 में आपको पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1990 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिस्ट किया गया। और बनारस आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण भी किया था। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली, जिन्हें वसुंधरा ताई के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध अनुवादक और समालोचक चंद्रबली सिंह की। वाराणसी के यूपी कॉलेज में उन्होंने 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और इसी बीच पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, ब्रेख्त, मायकोवस्की और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे विश्वविख्यात कवियों की कविताओं का अनुवाद किया। उन्हें मार्क्सवादी समाज दर्शन की गहरी समझ थी। और अब इसी के साथ बनारस आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, बनारस काशी कथा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वक्त अधिमास चल रहा है। इस अधिमास में काशी नगरी की परिक्रमा करने का विधान है। लगभग 50 मील या 75 किलोमीटर की इस काशी परिक्रमा यात्रा को सामान्य जनता पंचक्रोशी यात्रा के नाम से जानती है। काशी की पंचक्रोशी यात्रा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इसे पैदल चलते हुए 5 दिन में पूरा करने का विधान है। पहला दिन यात्रा का प्रस्थान बिंदु मणिकर्णिका है। यात्रा प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व व्रत रखते हैं और यात्रा के पहले दिन घर से निकलकर गंगा स्नान और विश्वेश्वर दर्शन करते हुए मुक्ति मंडप यानी ज्ञानवापी में बैठकर यात्रा का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ढूंढीराज गणेश की वंदना करके एक बार फिर विश्वेश्वर और भैरव को प्रणाम करते हुए मणिकर्णिका पर आते हैं। यहां मणिकर्णी देवी, मणिकर्णिकेश्वर महादेव और सिद्धि विनायक की अर्चना करके यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा के समय समस्त तीर्थ यात्रा की दाहिनी ओर पड़ने चाहिए और यात्री को निषेधाज्ञा दी जाती है कि वह यात्रा पथ के दाहिनी ओर मलमूत्र का त्याग न करे। मणिकर्णिका से चलकर पंचक्रोशी यात्रा का पहला पड़ाव कर्दमेश्वर मंदिर पर होता है। ये मंदिर काशी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। प्रथम दिन की यात्रा में परिक्रमा पथ में पड़ने वाले 25 देवताओं के दर्शन पूजन करने के साथ रात्रि विश्राम यहीं पर होता है। दूसरे दिन कर्दमेश्वर की पुनः अर्चना करके आगे की यात्रा शुरू होती है और दूसरे दिन का पड़ाव भीमचंडी मंदिर में होता है। दूसरे दिन की यात्रा में मार्ग में 24 देवताओं का पूजन किया जाता है और उन 24 देवताओं का पूजन करने के बाद भीमचंडी देवी को अन्य उपचारों के साथ दूध चढ़ा करके वहां पर रात्रि विश्राम किया जाता है। तीसरे दिन का तीसरा पड़ाव भीमचंडी देवी की एक बार फिर यात्रा करके शुरू होती है यात्रा, और यह यात्रा मार्ग में 25 देवताओं का दर्शन करते हुए रामेश्वरम पहुंचती है। देहली विनायक को लड्डू, लावा, चूड़ा, सत्तू और ईख चढ़ाया जाता है और रामेश्वर पहुंचकर वरुणा में स्नान, श्राद्ध, तर्पण करके श्वेत तिल और बिल्व पत्र से रामेश्वर की पूजा की जाती है और यहीं पर तीसरे दिन का पड़ाव होता है। चौथे दिन का पड़ाव पंचक्रोशी यात्रा के मार्ग में पड़ता है और यह पड़ता है शिवपुर में, और शिवपुर में यह स्थान काम रामेश्वर का पूजन करके और
पाश पाड़ी गणेश का पूजन करते हुए शिवपुर तक यह यात्रा पहुंचती है।

पंचक्रोशी यात्रा के पांचवें दिन शिवपुर से चलकर पृथ्वेश्वर सूप सरोवर होते हुए कपिलाहृत पहुंचते हैं और वहां विधि पूर्वक स्नान श्राद्ध तर्पण करके भगवान विश्वध्वज का दर्शन करते हैं। यहां कपिलधारा तीर्थ में पांचवें दिन का पड़ाव और रात्रि विश्राम होता है। इसके बाद छठे दिन प्रातःकाल विश्वध्वज को प्रणाम करके एक बार फिर से आदिकेशव, संगमेश्वर, विनायक, प्रहलादेश्वर, अगवस्तीश्वर, मंगला गौरी और सिद्धि विनायक का दर्शन पूजन करते हुए यात्रा मणिकर्णिका पर पहुंचती है और फिर भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके यह यात्रा समाप्त होती है। तो बनारस अधिमांस में काशी की पंचक्रोशी यात्रा का यह विधान है और काशी कथा के अंक में आज बस इतना ही। काशी कथा। और अब इसी के साथ बनारस घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कति बुरा भावना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा।

0: का। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
1: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
3: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक

0: गढ़क और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
1: हमारे 3680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत वायलिन वादन। आज के कलाकार हैं डॉक्टर आरपी शास्त्री, राग है वैरागी भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की है पंडित ललित कुमार।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत वायलिन वादन। कलाकार थे डॉक्टर आरपी शास्त्री और राग था वैरागी भैरव। श्रोताओं आप लीजिए सुनिए एक बार फिर से आरपी शास्त्री का वायलिन वादन। राग है भैरवी में धुन। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित कुबरनाथ मिश्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत वायलिन वादन। आज के कलाकार थे डॉक्टर आरपी शास्त्री। राग था भैरवी में धुन। इनके साथ तबले पर संगत की थी कुबरनाथ मिश्र ने। इसी के साथ शास्त्र संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल

फिर में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव

0: प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या @NewsHindi हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहतसे, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज

0: फोन या यार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्रिषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्रिषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak, honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways,

0: 156 runs set by SRH, RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs, and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India Cyprus Inc. Six Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled She Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले चार रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरीरशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वजीर आजम मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीरनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे, जिनमें रेलवे, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला

0: तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी, जो RBI की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। ये फैसला RBI के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया, जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। RBI ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमूई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं हैं 27.60% का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा, जो वॉशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफ्द को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है, जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमत अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें ये अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय क्याम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक्वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमत अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कांगो में अक्वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अल-अक़वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट। ITBP की एक 14 रुकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर

0: मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सरकली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को आईटीबीपी के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में यह काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने आईटीबीपी के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल जरूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजव्वजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दअमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBI ने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्क ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस की मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की एक शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम

0: विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फराइज अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर लाइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल खत्ते और बाहमी मफादात के बैन अवी मसायल पर गौर वखौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिंफी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से संदेश के बाद।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तेज धूप और गर्मी,

जिंदगी की तपती दोपहर, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। तेज धूप सड़के जैसे आग उगल रही हूँ, हवा भी गर्म सांसों की तरह चेहरे को छूती है, और ऐसे मौसम में हर इंसान किसी ठंडी छांव की तलाश करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मौसम ही नहीं, जिंदगी भी कई बार ऐसी गर्मियाँ आती हैं जब हमारे हालात तपते हैं, रिश्ते रूखे लगते हैं और मन थक सा जाता है। ऐसे ही एहसासों को लेकर आज की मधुरिमा में हम लेकर आए हैं तेज धूप और गर्मी, जिंदगी की तपती दोपहर, जहां बात होगी मौसम की और उन भावनाओं की जो धूप की तरह कभी छुपती हैं तो कभी नई रोशनी देती हैं।

दोस्तों, गर्मी की दोपहर में जब सूरज सिर पर होता है तो छोटी सी छांव भी किसी राहत से कम नहीं लगती। ठीक वैसे ही जिंदगी की भागदौड़ में किसी अपने का एक प्यारा सा साथ दिल को सुकून दे जाता है। धूप हमें ये एहसास कराती है कि राहत कितनी कीमती होती है। अगर तकलीफ ना हो तो सुकून का मतलब भी शायद समझ ना आए।

दोस्तों, एक समय था जब गर्मी की छुट्टियां मतलब नानी का घर, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और शाम होते ही छत पर बिछी चारपाइयां। बिजली चली जाती थी लेकिन बातें नहीं रुकती थी। हाथ वाले पंखे की हवा में भी एक अपनापन होता था। आज की सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन वो सुकून कहीं पीछे छूट गया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, धूप सिर्फ जलाती नहीं, वो इंसान को मजबूत भी बनाती है। किसान तपती धूप में मेहनत करता है, तभी खेतों में हरियाली आती है। एक मजदूर पसीना बहाता है, तभी किसी घर का सपना पूरा होता है। जिंदगी की गर्मी भी कुछ ऐसी ही होती है, जो हमें अंदर से और मजबूत बना देती है।

दोस्तों, हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गर्मी की दोपहर में बरगद की छांव जैसे लगते हैं। उनसे बात करके मन हल्का हो जाता है, उनकी मौजूदगी थके हुए दिन को आसान बना देती है। कभी माँ की दुआ, कभी दोस्त की हंसी, तो कभी किसी अपने की छोटी सी चिंता दिल को ठंडक दे जाती है। तो दोस्तों, तेज धूप और गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, जिंदगी का एक सच भी है, क्योंकि हर तपती दोपहर के बाद एक ठंडी शाम जरूर आती है और हर मुश्किल के बाद सुकून का पल भी मिलता है। बस जरूरत है उम्मीद की, उस ठंडी हवा को अपने दिल में बनाए रखने की। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे मधुरिमा में एक नए एहसास, नई कहानी और नए गीतों के साथ। दीजिए इजाजत अपने रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को अनुमति। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
2: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रू की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से DGP और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। DIG ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरसॉप और 4 कैंटीन खोली गई है जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही है। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से

0: बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर DFO विकास नायक ने सख्त रुख दिखाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने STP चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। DBA अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कार पूल बनाकर चलें अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
0: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने CM योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
2: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
0: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सांपों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
3: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव है उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
0: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
4: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
5: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी, दस्त, डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझावों से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं, क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब एक सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौ निहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ

0: ताजा व पौष्टिक आहार पर उसने कहा सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा, बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी, जिससे 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी इटावा और हमीरपुर जिलों की खबरें।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुराधा पत्नी राम अवतार भारती ग्राम सीवो पोस्ट परियासनपुर थाना चौबीपुर जिला वाराणसी से दिनांक 23 जून 2025 सुबह 10:30 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 24 वर्ष रंग गेहुआ लंबाई 5 फुट 2 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चौबेपुर वाराणसी को सूचित करें। अब अगली सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूनम यादव पत्नी रितेंद्र यादव राल्होपुर टेंगरा मोड़ रामनगर चंदौली से दिनांक 29 जून 2025 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से टेंगरा मोड़ से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 30 वर्ष रंग गेहुआ लंबाई 5 फीट 5 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहित मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य शिवपुर पंचकोसी रोड वाराणसी से दिनांक 12 जून 2025 दिन 4 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 24 वर्ष रंग सांवला लंबाई 5 फीट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना प्रभारी शिवपुर को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सीमा यादव पत्नी राजगृह सिंह यादव ग्राम भानपुर पोस्ट कर्मनासा थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ से दिनांक 20 मई 2025 दोपहर 2 बजे सिगरा आईपी मॉल वाराणसी से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 26 वर्ष लंबाई 5 फीट 5 इंच रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर

अपने निकट के थाने या थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता देवी पत्नी मनोज यादव ग्राम तातेपुर पोस्ट कमौली थाना चौबीपुर जिला वाराणसी से दिनांक 7 जून 2025 शाम 5 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 35 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 2 इंच है और इनका चेहरा गोल है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चौबेपुर वाराणसी को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाओ, रोज सफाई करना न भूलो।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: शुरू है बनामे खुदाए ताला कि जो मेहरबा है बहुत रहम वाला। सामीन बज़्म अदब रामपुर रेडियो मरकज से आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम सुबह कबूल करें। सामीन, उर्दू जुबान जहाँ मोहब्बत, तहजीब, अखलाक और शीरीनी का दर्ज देती है, वहीं साथ ही उर्दू अदब हमें यकजहती और आपसी मोहब्बत, भाईचारे का ऐसा सबक पढ़ाता है कि जो दिलों में घर कर जाता है। हम मुआहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। ये और ऐसे ही बहुत से दूसरे शेर कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। चंद्र प्रकाश जौहर की एक नज्म मजहब का इख्तलाफ मिटाने की बात कर उसका ये शेर कि जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, नफरत की आग दिल से बुझाने की बात कर। इस जैसे बहुत से अनगिनत अशार, नज़्में और गजलें कौमी यकजहती की एक ऐसी सबकामोज शायरी है जो उर्दू जुबान और अदब को तमाम दूसरे लिटरेचर्स में मुमताज और सरबुलंद रखती है। जी हाँ, समीन अदब, आज इसी सिलसिले में हमने जिस तकरीर का इंतखाब किया है उसका मौजू है उर्दू अदब में कौमी यकजहती के अनासिर। और इस तकरीर को पेश करने के लिए हमारी दावत पर तशरीफ लाई हैं मोहतरमा तरन्नुम परवीन साहिबा। समात कीजिए उनसे ये तकरीर।
2: हिंदुस्तान दुनिया के मुमालिक में अपनी अलग पहचान और इम्तियाजी शान रखता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ तहजीबें और मुख्तलिफ जबानें पाई जाती हैं। हर 12 कोर्स पर जबान का लहजा बदल जाता है। यहाँ 2175 के करीब जबानें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मुश्तरका अनासिर भी हैं जिनमें एक मुश्तरका तहजीब के हुज़ू व ख़ाल नुमाया तौर पर नजर आते हैं, जिसे कसरत में वहिद्दत के नज़ारे यंग रंगी से ताबीर किया जाता है, जिसे गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है। और इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के मुश्तरका कल्चर के हजुकाल में यक रंगी का सबब सबसे बड़ा मजर उर्दू जबान और इसका अदब है। उर्दू जबान और इसके अनासिर से कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की भरपूर आबयारी की गई है, या अगर कहा जाए कि उर्दू अदब ही ने कौमी यकजहती का तसव्वुर पेश किया है तो बेजा नहीं होगा।

उर्दू जबान जब वजूद में आ रही थी, कौमी यकजहती भी उर्दू के दोश बदोश आगे बढ़ रही थी। उर्दू मकामी बाशिंदों, हिंदू और मुसलमानों के मेलजोल से वजूद में आई। अरब, तुर्क, ईरानी हिंदुस्तान आए, सबकी अलग अलग जबानें अरबी, तुर्की, ईरानी, फारसी थीं। इन जबानों के अल्फाज मकामी जबानों के अल्फाज के साथ इस तरह मिल गई कि एक नई जबान जहूर में आ गई और ये जबान रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में बोली और समझी जाने लगी। मुख्तलिफ तहजीबों की अहम आहंगी का फरीजा भी अंजाम देने लगी और जो अभी तक हिंदुस्तान में किसी जबान ने अंजाम नहीं दिया था। और इस तरह पहली बार पूरा मुल्क उर्दू जबान की बदौलत हम जबानी की लज्जत से आशना हुआ। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू जबान के तश्कीली दौर में हजरत अमीर खुसरो के नगमे दिल्ली की फिजाओं में गूंज रहे थे। अमीर खुसरो के दोहे पहेलियां आज भी लबो लहजे की शक्ल में मौजूद हैं। अमीर खुसरो ने ऐसे अशार कहे जिनका एक मिसरा फारसी का और दूसरा मिसरा हिंदी या उर्दू का है। गोया अमीर खुसरो पहले शख्स हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह उर्दू जबान को अदबी हैसियत से इस्तेमाल किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की मुश्तरका कौमियत की बुनियाद रखी। इस वक्त हिंदू मुसलमान की एक दूसरे के करीब आ चुके थे और एक दूसरे के तहजीब रस्मों रिवायात से वाकिफ हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद ने इस रिवायत को और आगे बढ़ाया। सुल्तान मोहम्मद ने हिंदुओं को हुकूमत में शरीक किया, उनको सरकारी ओहदों पर मंसूब किया, बड़ी हद तक दो कौमों की दूरी को कम किया और कौमी यकजहती का मजाहरा किया। सुल्तान मोहम्मद ने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी मुंतकिल किया और अपने साथ दिल्ली की पूरी आबादी को भी साथ ले गए और इस तरह शुमार और जुनूब को जोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो जबान दिल्ली में तश्कील पा रही थी इलाकाई सरहदों को तोड़कर मुल्क गैर जबान हो गई। शुमाल और जुनूब का एक मरकज पर आना मुख्तलिफ तहजीबों वाली कौमों के आपसी मेलजोल के लिए ऐसी जबान का होना गरेज था। गुफ्तगू के जरिए एक दूसरे को समझने में मददगार हो और आपस में कुर्बत पैदा कर सके, इसी वक्त इस फरीजे को तश्कील शुदा जुबान उर्दू ने खूब अंजाम दिया। उर्दू हर हिंदुस्तान की जबान थी। उर्दू की मिठास और शिरीनी ने हर हिंदुस्तान के दिल में जगह बना ली थी। जो कुछ लोगों को रास नहीं आया उन्होंने उर्दू हिंदी की तफरीक पैदा कर दी। उर्दू हिंदू मुसलमान दोनों की मुश्तरका जबान थी। दोनों ने अपने ख्यालात व एहसासात व जज्बात का इजहार जबानों कलम से उर्दू में करते थे और यही मुल्क की मुश्तरका कौमियत की तर्जुमान थी। भाईचारे और कौमी यकजहती के जज्बात से उर्दू जबान इतनी मालामाल है कि हिंदुस्तान की कोई दूसरी जबान इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हिंदू अदीब व शोरा ने अपने हम वतनों यानी मुसलमानों के जज्बों का एहतराम करते हुए मजामिन लिखे। शायरों ने हमदो नात लिखी जिनमें फिराक गोरखपुरी, चकबस्त, गोपी चंद नारंग के नाम काबिल जिक्र है। मुस्लिम शोरा ने हिंदू देवी देवताओं रास लीलाओं का तस्करा किया है। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उर्दू शोरा की बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कौमी यकजहती, हुब्बे अलवतनी, भाईचारे का पैगाम दिया। जोश मिजाज, दुर्गा, सहाय सरवर, फैज अहमद फैज, अकबर इलाहाबादी, हसरत राम प्रसाद बिस्मिल, ब्रज नारायण चकबस वगैरह शोरा ने एक कौमी नजरिए की ताईद में पेशे बाहर कलाम छोड़ा है जो यकजहती हुब्बे अलवतनी की भरपूर सिफारिश करता है। उर्दू नस्र निगारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हुब्बे अलवतनी, आपसी भाईचारे, कौमी एकता पर तहरीरों का अजीम सरमाया छोड़ा है जिनमें अबुल कलाम आजाद, मजनू गोरखपुरी, मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद, एहतशाम हुसैन, राही मासूम रजा वगैरह वगैरह ने अपने इफ्कार से लोगों में कौमी यकजहती की रूह फूकी और हर हिंदुस्तान के दिल में वतन से मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे की रूह फूकी। कौमी यकजहती को फरोग देने में उर्दू ड्रामों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। देखा जाए तो उर्दू ड्रामे ने इब्तदाई दौर से ही कौमी यकजहती को फरोग देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया, ताज कश्मीरी का अनारकली ड्रामों में कौमी यकजहती का सबक मिलता है। ड्रामा निगारों में कई बड़े नाम आज भी हमारे सामने हैं, मसलन जहीर अनवर कमाल अहमद, जावेद अख्तर, जिन्होंने अपने ड्रामों के जरिए मोहब्बत, जज्बात, इंसानियत, भाईचारे की मिसाल पेश की है। 1947 के बाद मुल्क में

और इसे नौजवानों के लिए खास तौर से पेश कर रहा हूं। वो छत पे आके उसका मुस्कुराना, वो छत पे आके उसका मुस्कुराना।

0: कहीं कमतर नहीं है, बहुत जरखेज है, बंजर नहीं है हमारा दिल, कोई पत्थर नहीं।
1: ये थे जनाब बाकर जैदी, जो अपने खूबसूरत कलाम से हम सबको महसूस कर रहे थे।

0: और समीन, अब घड़ी की सुइयों का इशारा हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ से आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे अमलेश कुमार पांडे। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म ये जिंदगी का सफर से। आवाज सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की। गीत लिखा है फैज अनवर ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म साजन का घर से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पापा कहते हैं से। आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाज अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से ये गीत। गीत लिखा है मयूरपुरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है।

अब लीजिए सुनिए फिल्म हम है राही प्यार के फिल्म से ये गीत। आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की है, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

लकी अली और राम्या की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है इब्राहिम अक्स ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला है प्यार का, इस फिल्म से। आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म दिल विल प्यार व्यार से, आवाज़ बाबुल सुप्रियो की और प्रीति मजुमदार की। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्णा।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए फिल्म दिल है तुम्हारा से ये गीत, आवाज शान और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं, अब लीजिए सुनिए फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की।

0: क्या हुआ?
1: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
2: एक्सक्यूज मी,
3: हाँ बोलना।
0: क्यूट है ना?
1: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
1: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
5: आप अरुण कुमार पांडे जी बोल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
5: हम गुलाब चंद्र मिश्रा ग्राम तकियोकर पोस्ट रामजालगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: और गर्मी तो बहुत तेज हो गई है।
5: बहुत गर्मी तेज है जौनपुर में, जितना लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है लगभग।
1: जी जी, साल दर साल ये जो गर्मी का मौसम है वो पहले के मुकाबले और तेज होता जा रहा है।
5: बहुत तेज है सर।
1: तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सतर्कता बरते आदमी और घर में रहे जब तक बहुत जरूरी काम न हो, और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो गमछा और पानी का इंतजाम रखे कि बहुत जरूरी हो तभी धूप में संपर्क में आए। जी जी, आपके विषय में तो हम लोग जानते हैं, आप हमारे बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हो, रेडियो से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं आप।
5: हम टोटली ब्लाइंड हैं, बहुत सुझाव दे सकते हैं
1: जी।
5: क्या है कि हम ये जो धन्यवाद आता है उसमें तो हम बात देने हैं, उसमें हम भेजने के लिए हम टोटली ब्लाइंड।
1: आपके कोई परिचित हैं जो अगर लिख सके आपके कहने से?
5: मोबाइल हमारे पास तो छोटी वाली है ना।
1: जी जी,
5: बड़ी वाली नहीं है।
1: तो अगर जैसे कोई हो जो कागज पे भी लिखने जानता हो तो इधर कभी आए तो हमारे यहाँ आकाशवाणी में चिट्ठी भी आएगी तो उस प्रोग्राम के नाम से तो हम लोग उसको कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
5: आप पता तो हम जानते हैं।
1: जी जी,
5: जैसे पत्र के लिए धन्यवाद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी।
1: बिल्कुल आपको याद है,
5: नंबर है 221010।
1: हाँ बिल्कुल यही पता है।
5: तो हम तो जानते हैं, तो किसी से लिखवाएंगे तब जाएगा।
1: हाँ हाँ
5: हम आपको मतलब
1: जी, आप इस कार्यक्रम में आप बता सकते हैं।
5: तो जैसे पहले शुक्रवार को जो भोज

0: आदमी गाने आता था
1: जी जी,
0: तो कम से कम चार पांच गाने छह गाने जो है शामिल किए जाते थे। और जो सोमवार को आपसे कार्यक्रम होता
1: तो ये चूंकि अब व्हाट्सएप पर हो गया तो इसमें आधे घंटे के अंदर तो तीन चार गाने मुश्किल से आ पाते हैं क्योंकि फरमाइशी नाम भी बहुत रहते हैं।
0: अच्छा, एक सुझाव मैं ये देना चाहता हूँ
1: जी,
0: जो आपका कार्यक्रम झनकार होता है उसमें हफ्ते में किसी एक

0: तो ये हो जाएगा कि आपको बार बार वही गाने सुनने को मिलेंगे। जी जी, अगर थोड़ी फिल्में और होती, हम लोग प्रयास कर रहे हैं काफी अरसे से, अगर कुछ और 150 फिल्में और होती तो उसे हम लोग आधे घंटे एक घंटे कर सकते हैं। अब किसी दिन झंकार की जगह भी हो सकता है, फिल्में अगर हमारे पास आई, फिल्मों की तादाद बढ़ी तो जरूर आपकी बात पर हम लोग गौर करेंगे। आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको इस कार्यक्रम में? आप जरूर फिल्मी गाने भोजपुरी जो हमारे पास हैं वो हम सुनवा सकते हैं आपको। जी, अब अलका याग्निक की आवाज में गीत है, पिछले हफ्ते भी इसकी फरमाइश किसी ने की थी।
1: हमारे भतीजे, आप बात कर लीजिए थोड़ा।
0: जी
2: हेलो।
0: जी नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: तो आपका नाम क्या है?
2: छोटू।
0: छोटू जी, तो आप तो लिख पाते हैं ना? किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? 8वीं में है। तो आप तो उनके कहने से आप चिट्ठी लिख सकते हैं हमें, या फिर वो वाले मोबाइल एंड्रॉइड वाले यूज करते हैं क्या जिसमें व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलता है?
2: अभी वो बिगड़ी है, यही चलता है छोटी वाली।
0: हाँ, तो जब बन जाए तो जरूर आप हमें मेल कीजिएगा। ये बताएं कि प्रोग्राम आप हम लोग के सुन पाते हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
2: अच्छा लगता है। लेकिन आपके कार्यक्रम में भोजपुरी गाना नहीं बजता?
0: जी, भोजपुरी गानों का हमारे यहाँ फिलहाल तो एक कार्यक्रम है जैसा वो जिक्र कर रहे थे, सोमवार को 2:30 से 3 बजे के बीच, और फिल्में चूंकि सीमित तादाद में हैं, बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की हमारे पास नहीं है, इस वजह से ज्यादा गाने हम लोग नहीं सुनवा पाते। अब गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर, आप लोगों की फिल्म है पिया के गाँव।
1: लोगों का नाम ले लें।
0: जी बताएं।
1: सुनील कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा, राजन यादव और छोटू, संतोष कुमार पटेल और रिंकू और
0: गीत सुनते हैं, फिल्म है पिया के गांव, अलका याग्निक की आवाज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
1: भाई जान नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जिला रामपुर तहसील फार ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ
0: जी। और इस बार अभी आपके मिर्च की जो फसलें हैं उनकी क्या स्थिति है?
1: सर कल हमने मिर्च तोड़ी है, बहुत अच्छा रेट है, 42 रुपए का रेट है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्ती आ रही है।
0: जी जी,
1: 80,000 रुपए की मिर्च तोड़ी है हमने सर कल।
0: क्या कहने, तब तो बहुत अच्छा है कि ये नकदी फसल के रूप में आपके इलाके में प्रचलित है। और मार्केट कितनी दूरी पर है वहाँ पर?
1: मार्केट बस हमारा ये 4 किलोमीटर दूर तक ही है, खरीदते हैं तिजारती।
0: जी जी, और ये कि खेती बाड़ी में परिश्रम भी है और पूरा परिवार आपका लगा रहता होगा?
1: नहीं, परिवार के लोग तो नहीं लगते हैं, बस जो लेबर होती है हमारी गांव की, मैंने बताया था आपको, वो लेबर तोड़ती है, हम सिर्फ बोरियों में भरकर लेकर जाते हैं और वहाँ चौराहे पर तोलाते हैं बस।
0: जी जी, अच्छा, ये फसल लगाने और उपज आने तक में कितने समय का ये पूरा चक्र होता है?
1: सर ये नवंबर में लगाते हैं हम।
0: जी जी, और अभी एक आध महीने और ये चलेगा?
1: जी जी, अभी एक महीना और चलेगा, कि जब तक धान लगते हैं ना जुलाई में, जुलाई तक
0: जी
1: चलता।
0: हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात
1: है सर।
0: देखिए, किसी भी काम में परिश्रम तो है।
1: जी जी,
0: और खासतौर से अभी तो बहुत तेज धूप का मौसम है, हालांकि जब धूप तेज होती है तो मिर्च तीखी हो जाती है, तो मिर्च का तो ये तीखा रहे उतना उसका भाव अच्छा रहेगा।
1: जी जी जी हाँ, इस समय तो गर्मी अच्छी पड़ रही है तो मिर्च भी थोड़ी तेज होती है और रेट भी सही है।
0: जी जी, अच्छा, तो हरी मिर्चों का ही ये होता है, बहुत सारी जगहों पे राजस्थान वगैरह में वो मिर्च को लाल कर लेते हैं, फिर उसका पाउडर वगैरह में इस्तेमाल आता है।
1: जी जी जी, ऐसा ना, अगर सर रेट 10-12 रुपए का रह जाता ना, सस्ती होती है, तो हम खेत लाल कर देते हैं, उसे अपनी छत पर डाल दिया लिंटर पर सुखा कर, फिर उसे बेचते हैं 250-250 रुपए किलो।
0: हाँ हाँ हाँ, ये चीज है, तब फिर हर चीज का ख्याल रखना होता होगा।
1: जी जी जी, क्यों बारिश आ जाती है, बारिश अगर मौसम खराब है तो उसे इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब मेहनत का तो काम है, जब मेहनत कर रहे हैं तो पैसा मिल गया देख।
0: बिल्कुल, अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाए?
1: आज सर गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे वो गीत सुनवा देना, जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है बाबू गर्मी।
0: जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे, कुली नंबर 1 फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजों में, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। आइए गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश, मैं रईस खान अम्बे वाली फूले नगर महाराष्ट्र।
0: हाँ आपके तो संदेश आते रहते हैं हमारे यहाँ व्हाट्सएप में भी।
1: आज बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद फोन लगा सर।
0: जी जी जी, ये है, अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर और बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं आपके और हमारे दरमियान, लेकिन आप हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ,
0: तो क्या खास लगता है अच्छा आपको हमारे यहाँ के प्रोग्राम में?
1: अरे सर, आपका प्रोग्राम तो समझो नंबर वन है। और बाकी प्रोग्राम तो थोड़े बहुत सुनता हूँ मैं, ऐसा नहीं, और पत्र के लिए धन्यवाद भी सुनता हूँ मैं।
0: जी तो उसमें भी जरूर आप लिखिए हमें प्रोग्राम के बारे में,
1: इंशाल्लाह आगे जाके।
0: जी जी इंतजार रहेगा। अब बताएं कि आप ये जो अम्बी वाली आप बताते हैं, ये मुंबई से किस तरफ कितनी दूरी पर है?
1: नहीं, ये कल्याण से लग के, कल्याण है।
0: जी जी
1: जी, कल्याण है ना?
0: हाँ हाँ मालूम है।
1: कल्याण से, कल्याण के बाद उल्लास नगर है, उल्लास के नगर के बाद अम्बे वाली लगता है।
0: जी बिल्कुल, यानी ये स्टेशन है, हम लोग आते जाते उधर ध्यान नहीं दिए होंगे, कल्याण तो हमें याद है।
1: कसारा लेन जाती ना सर।
0: जी जी, तो अच्छा आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे इधर तो गर्मी बहुत है।
1: इधर भी बहुत गर्मी है सर, और थोड़ा थोड़ा अवर जैसा है, धूप भी निकल रही है, अवर भी है।
0: तो मुख्यतः आपके इलाके में क्या होता है, खेती बाड़ी है या फिर कारोबार इंडस्ट्री वगैरह है?
1: नहीं सर, तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसी बस्ती है, मतलब काम करने लोग जाते हैं यहाँ से, कल्याण में।
0: जी जी जी,
1: थाना में, मतलब बाहर लोकल से जाते हैं सर।
0: हाँ वहाँ तो कल्याण, थाने, मुंबई, ये तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ देश भर से लोग जाते हैं, और थोड़ा सा मुंबई इतनी महंगी जगह है, रहना वगैरह बड़ा मुश्किल है, इस वजह से लोग आसपास के इलाकों में रहते हैं।
1: तो ये एरिया थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा इधर आबादी थोड़ी कम है।
0: जी जी, तो बढ़िया है। अब बता दें कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें?
1: फिल्म का नाम है 10 नंबरी, और गाने के बोल हैं दिलरुबा दिल्ली वाली।
0: दिलरुबा दिल्ली वाली, और बहुत अच्छा गीत है अपने दौर का। और ये है कि अपने दौर, जब हम लोग कहते हैं 1976 की ये फिल्म है, तो ये हम लोगों का ही दौर है। हालांकि नई पीढ़ी भी एक वक्त के बाद इन्हीं पुराने गानों को सुनती है।
1: आज भी वही लोग सुनते हैं, लोग यहाँ पे।
0: जी जी,
1: वही सुनते हैं पुराने
0: गाने। आशा भोसले, मन्ना डे और मुकेश की आवाजों में है, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं लक्ष्मीकांत, संगीत।

सुना था वैसा ही पाया, आपको देखा तो यकीन आया, अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो।

0: आशिकों के सरदार। तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, कि मेरा रखीब तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
1: एक आशिक गरीब।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फॉर इन्फॉर्मेश। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 पर, और इस वक्त आप सुनेंगे रोजगार मेला 2026 पर विशेष प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरियन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर स्टोर कीपर कम क्लर्क जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सीनियर रेजिडेंट सीपीएससी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी

और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें

आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं।

भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके

विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा

नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से हैं। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देश

0: देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:58 हुए हैं।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है। अपने

0: आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी आकाशवाणी
1: श्रोताओ हम आपको बता दें कि आज हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जो आप 11 बजे सुन रहे थे उसका शेष भाग आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, दिन के ठीक 12 बजे हैं। कहकशां कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की गाई गजलें। सबसे पहले शकील बदायूनी की लिखी गजल।

दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। श्रोता, आपको बता दें कि ये जो मशहूर गजल है, इसे लिखा बहजाद लखनवी ने। और अब मोमिन खां मोमिन की लिखी गजल, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो,

0: वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोमिन खां मोमिन का ये कलाम अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।

0: अब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और अब आज के कहकशां प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। शायर हैं सुदर्शन फाकिर, फनकार बेगम अख्तर। कुछ तो दुनिया के इनायात ने दिल तोड़ दिया, कुछ मेरे घर के हालात ने दिल तोड़ दिया।

0: कहकशां कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की गाई गजलें। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राम शंकर के गाए गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार थे राम शंकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं मुराद बानो का उपशास्त्रीय गायन। आइए सुने इनकी गाई राग मिश्र पहाड़ी में ठुमरी। संगत करने वाले कलाकार हैं सारंगी पर बच्चा लाल मिश्र और तबले पर कुमार लाल मिश्र।

0: मिश्र पहाड़ी में ठुमरी। सारंगी पर संगति की बच्चा लाल मिश्र ने और तबले पर कुमार लाल मिश्र ने। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

जी सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। क्षेत्राधिकारी सदर जनपद चंदौली से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार आयुषी सिंह, पिता का नाम सतीश कुमार सिंह, ये रेवसा कंदवा चंदौली की निवासी हैं और 2 मई 2026 से लापता हैं। आयुषी सिंह की आयु है 21 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, एक हरा शरीर, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था भूरे रंग की टी शर्ट और लोवर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो क्षेत्राधिकारी सदर जनपद चंदौली को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार चंद्रा, पति का नाम धर्मेंद्र कुमार, ग्राम ढूही कला जमालपुर मिर्जापुर की ये निवासी हैं और 26 फरवरी 2026 से लापता हैं। चंदा की आयु है 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके हाथ के अंगूठे पर कटे का निशान है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था छीटदार बादामी रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त एक और सूचना, इसके अनुसार रेशमा, पिता का नाम रमेश बिंद, ये महेशपुर ड्रमंडगंज मिर्जापुर की निवासी हैं और 20 अप्रैल 2024 से ग्राम महेशपुर से लापता हैं। रेशमा की आयु 28 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, एक हरा शरीर, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मिर्जापुर को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम में आज सीपी माधवन नंपूथिरी का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित होगा। रात में 9:30 पर अंजुमन कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी बेगम अख्तर। शाम 7:31 पर स्वरबेला कार्यक्रम में आप धर्मेंद्र कुमार गुप्त का काव्य पाठ सुनेंगे। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आकाशवाणी गांव में, इसके अंतर्गत कृषि प्रसार और ग्रामीण विकास विषय पर डॉक्टर कल्याण धदेई से सतीश कुमार यादव की बातचीत सुनेंगे। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे अमलेश कुमार पांडे, इनके गाए कुछ लोकगीत आप लोक संगीत कार्यक्रम में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज यूथ जंक्शन फोन इन कार्यक्रम होगा। साथ ही यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और आज की बात, नन्ही दुनिया कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश का शेष भाग आप सुन पाएंगे, जो कार्यक्रम आज आपने सुबह 11 बजे इसका पहला भाग सुना था। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा और गीत संगीत के अलावा मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से कैसे बचें विषय पर डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी से बातचीत सुनवाई जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:15 और 21 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहन लोगों के नमस्ते और साथ में कहीं पारुतहू के नमस्ते।
1: नमस्ते हो दीदी, और सुनने वाली सब बहन लोगन के हमार पारो के नमस्ते। और हो दीदी, का हाल चाल बा?
0: अरे हाल चाल पूछत बाबू, कहे कि गर्मी इतना जोन हो कि पड़त बा भीषण, और कहे कि भाई अपन बहन लोगन से मिले के हो तो अही के हो, और साथ में कही ना कि भाई जेके भी काम धाम बा ओके तो निकलना हो। लेकिन
1: हाँ
0: एक साथ
1: बिल्कुल।
0: साथ एक बात और पारो कही ना कि भाई अगर बहुत जरूरी ना होवे तो भाई सुबह या शाम का समय अपने लिए तय कर लें, दोपहर में जो नहीं भीषण गर्मी पड़त हो धूप होत हो इनमें निकले से बचें।
1: हाँ दीदी, बात करूँ, गर्मी तो बहुत पड़ा था, लेकिन देखा दीदी, हर मौसम के अलगे आनंद होला। तो देखा, चाहे जैसन मौसम होखे, अब काम धाम तो चलते रही, भागा दौड़ी भी होत रही, लेकिन जनिया दीदी, यही तरह के व्यस्तता में जब तनी हमन के बैठल जाइला, सुस्ताली आराम
0: सुस्तावल
1: कैला,
0: जाला,
1: हाँ
0: आराम
1: सुस्तावल
0: कैला।
1: जाला, तो एगो आवाज जोन होला वो हमन के हमेशा सुकून देला। और वो ओकर नाम हवे आकाशवाणी, जेकर अभी 90वां वर्ष मनावल जात है। तरह तरह के आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रसारित हो रहा बा। तब एकर आकाशवाणी के स्थापना जिन भइल रहे, ये 23 जुलाई 1957 में भइल, आ एकर नाम रहे तब भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। लेकिन 1936 में एकर नाम बदल के भइल ऑल इंडिया रेडियो, आ 1957 में हमन के आकाशवाणी कहे जाए लागल।
0: अरे कहीं ना कि भाई आजादी का जो पहली सुबह रहल आज तक ऑल इंडिया रेडियो जो है ना अपन देश का जो है हर लोगों के दिल के धड़कन बन गई हुआ।
1: हाँ
0: और
1: दीदी,
0: इतने ना ही कहीं कि रेडियो जो है ना ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साधन हो, ये जो है मनोरंजन शिक्षा जानकारी का महत्वपूर्ण साधन हो। रेडियो के
1: हाँ
0: माध्यम से हम लोग समाचार सुनीला, खेलन का
1: हाँ
0: जानकारी मिलेला, सरकारी योजना के बारे में जानला, और कहीं की दूर दराज क्षेत्र में जबकि कहीं कुछ ना रहल भाई मनोरंजन का
1: हाँ
0: साधन, ओ समय हमार जो ये रेडियो रहल ना उ लोगन के, हमें तो याद हुए कि जब लड़कियां में हम रहे तो देखे कि जो गांव के लोग बाएं भाई सबके पास
1: हाँ
0: रेडियो ना रहे,
1: हाँ
0: लोग ना
1: दीदी,
0: एक रेडियो गांव में रहे, दो रेडियो रहे, और जगह जगह लोग जुट के इकट्ठा हुई के चौपाल लगावा, रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारण होना सब मिल के ओके सुने। और
1: हाँ
0: साथ
1: दीदी,
0: में कुछ लोग रहे कि भाई इतना रेडियो को उनके प्रेम रहे कि आगे रेडियो अपने साइकिल में लटकाए ले और लटका के ओके अपन कार्यक्रम सुना तो अपन घरे के काम करा तो चल चल जाए। कुछ लोग अपने
1: हाँ
0: खेती क्यारी पर भी जो है रेडियो लेके चल जाए कि चला यही बहाने जो है कि कार्यक्रम भी सुनल जाए, मनोरंजन भी हुई, साथ में खेती का काम भी हो जाए। तो कहीं ना कि ये रेडियो हम लोग के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई हो। और दूसरा ये भी हो कि इनमें नाटक हो, कहानी हो,
1: हाँ
0: गाना
1: दीदी,
0: हो, हर तरह का प्रसारण कर जाए, ये बताए कि भाई जिकरे जो तरह के कार्यक्रम सुनना चाहे ओके ऐसे आनंद मिले।
1: हाँ दीदी, एकदम ठीक बात कहलू है दीदी। आ देखा, समय चाहे जितना बदले, तकनीक भी बदलल, आ चाहे जितना आगे बदले, लेकिन आकाशवाणी के अपन अपन कभो ना बदलल। आई हर दौर में अपन आवाज के ताजगी बनौले रहल।
0: अरे भाई कहलू आवाज का ताजगी बनौले, जब जैसे जैसे जमाना बदलल ना एकर भी थोड़ा स्वरूप जो है बदल गई हो। अब तो देखा आधुनिक युग में एकर का विस्तार इतना हो गई बा ना कि
1: हाँ
0: भाई
1: दीदी,
0: मोबाइल ऐप के माध्यम से जैसे हम लोग कहला कि न्यूज ऑन AIR ना,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, एकरे माध्यम से भी आधुनिक श्रोताओं तक जो है कि हम लोग का कार्यक्रम पहुंचा था। और कहीं कि भाई इतने ना ही सफर में चल चल जाए, तू ट्रेन में रहा, गाड़ी में रहा, अपने कार में रहा, जहां चाहा अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है ये रेडियो के कार्यक्रम के सुन सकला। रेडियो जो हो रेडियो के जो कार्यक्रम भी होला ना ये इतना नहीं, हम कहें कि भाई बच्चन के जो हो शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी बदे भी जो है पढ़ाई में मदद करला। एकरे साथ साथ इतना नहीं आपातकाल का जब स्थिति होला ना तो उनमें
1: हाँ
0: जो है पहले से जो है कि प्राकृतिक आपदा का जो है कि प्रसारण रेडियो पर हो चल जाला। तो कहीं कि ये हर तरह का कार्यक्रम रेडियो के
1: हाँ
0: माध्यम
1: दीदी,
0: से हम लोग सुनीला, और ये एक जो है सस्ता और सरल प्रभावी संचार माध्यम हो, और ये हम लोग के जीवन का अंग का जो हो कि ये निरंतर जो हो हम लोग के जीवन में चलत रही और हम लोग का भी ये कोशिश रही।

0: हाँ
1: कि ये
0: बिल्कुल
1: रेडियो के माध्यम से अपने श्रोता लोगन के अच्छा से अच्छा कार्यक्रम जो हो सुनावल जाए और लोग हम लोगों के साथ जुड़ल रहें।
0: हाँ दीदी, देखा दीदी बात कैलू है, इतना बढ़िया बढ़िया के जानकारी देलू हाँ कि हाथे हाथे में मोबाइल बा आजकल, लेकिन जेमा हजारों चीज बा, अनगिनत चीज बा, लेकिन जो रेडियो के मिठास रहे ना वो अलगे रहे। छते पर चाहे दुआरा पर भइल, जब हमन मनइन के बटोर होखे तो ऊ रेडियो के आवाज याद करे जैसे घर के बुजुर्ग कौनो कहानी सुनावत होखे, आ गीत संगीत सुन के तो मने झूम जाए। आ समाचार के समय शरीर तो हम लोगन के जुबान पर रहे
1: अरे भाई कहीं कि सब कुछ जुबान पर रहे। अब जौन हो कि एके हम लोग हर जगह सुन सकत थैला, हर
0: हाँ
1: जगह
0: दीदी
1: जौन हो ले जा सकत थैला, तो कहीं कि हम लोग का कोशिश भी यह हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग का श्रोता रहें, हम लोग के कार्यक्रम के सुना, हम लोग उनसे जुड़ल रहें, कहीं कि कुछ जरूरी संदेश सुन लेवल जाए,
0: हाँ
1: फिर आगे
0: दीदी
1: बात कही कहल जाए।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह मजा।
3: अनजान ऐप से बचें,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनो ना,
6: हाँ
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
4: 0542227658।
5: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ 0542227658।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: कहो पर।
0: हाँ दीदी देखा दीदी, हमन के घरेती लोगन के जागरूक करे बदे गोहरा गोहरा के जानकारी साझा करे नीजा। कह से कि हम गृहिणी लोगन के सब चीज में, जैसे रसोई के काम भइल, खरीदारी कैल भइल, सब जिम्मेदारी होला। तो हमन के रसोई में अनाज सब्जी और सब जन खाद्य पदार्थ बा शुद्ध बा कि ना, इहो जानल बहुत जरूरी बा।
1: बात कैलू खाद्य पदार्थ का, कहे की भाई गर्मी का समय चलत हुए, लड़कन बच्चन से लेके सभी जो की बाहर भीतर खाद पियत हुए, लेकिन कभी कभी होला कि अपने खिला पिला में हम लोग ई ना जान ला कि जोन सामान हम लोग खा थीला इमें का मिलावल गई हो या में का मिलावट हुआ है।
0: हाँ।
1: तो एक जानना भी बहुत जरूरी हो, कहे से घर के अंदर के बाहर हो चाहे बाहर के बात हो, भाई सबके जागरूक होए के चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। और स्वास्थ्य का सीधा संबंध जो होला वो हमारे खान पान से होला।
0: हाँ,
1: तो अगर खान पान हम लोग का शुद्ध रहे तब हम लोग स्वस्थ रह जाए। तो कहीं ना कि यही पे बही लोगों के बढ़िया से हम लोग कहने वार्ता सुनवा देवल जाए।
0: हाँ दीदी, मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से कैसे बचे पर जानकारी दी है डॉक्टर ज्योत्सना चतुर्वेदी जी, तो बहन लोग हई वार्ता सुने।
1: बिल्कुल सुने।
8: खाद्य पदार्थों में मिलावट आज की एक गंभीर समस्या है। आज हम जानेंगे कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से कैसे बचा जाए। मिलावट का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो मिलावट का अर्थ यहाँ नकारात्मक है। मिलावट मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं तो गेहूं के आटे में अगर हमने जौ का या चने का आटा मिला दिया तो उसको हम मिलावट नहीं कहते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली चीजों को मिलाते हैं तो उसको हम मिलावट कहते हैं। और किसी शुद्ध वस्तु विशेषकर खाद्य पदार्थों में जानबूझकर कोई सस्ती घटिया या जैसे हानिकारक कोई वस्तु मिलाया जाए जिससे कि उसकी गुणवत्ता कम हो जाए तो और वह अशुद्ध हो जाए तो उसको हम मिलावट कहते हैं। इस प्रकार की मिलावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए की जाती है, लेकिन जो इसमें पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कह सकते हैं कि यह एक धीमे जहर की तरह है जो कैंसर, हृदय रोग, लीवर या किडनी के खराब होने के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ ही शुरुआत इसकी होती है पेट की कई अन्य बीमारियों के साथ। साथ ही साथ यह तंत्रिका तंत्र संबंधी यानी नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। बच्चों में तो इस तरह के खाद्य पदार्थों से पोषण की कमी हो जाती है और उनका विकास रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि यह निर्बाध गति से चलता है, बल्कि इसके लिए कई कार्रवाइयां सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन विभिन्न कार्रवाइयों एवं दंडों के बावजूद भी मिलावट चलन आज भी प्रचलित है।

कह सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक लाभ के लिए किया जाता है, यानी कम से कम निवेश के साथ अधिकतम लाभ अर्जित करना ही इसका मुख्य ध्येय है। इसलिए हम उपभोक्ताओं को यह चाहिए कि मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए उसको पहचानें और उसके प्रयोग से बचें या उसका सामूहिक बहिष्कार करें। सरकार भी समय-समय पर इसकी जांच करवाती है और चेतावनी के बावजूद भी जो लोग मिलावट करते हैं उनको दंडित भी करती है। ऐसा नहीं है कि सीधे दंड दिया जाता है, बल्कि मिलावट के बारे में और उसके दुष्प्रभावों के बारे में व्यापारियों को निर्देश दिया जाता है। बावजूद इसके जब वह अपराधी पाए जाते हैं या मिलावट करते हुए पाए जाते हैं तो उनको दंड का विधान है। इतना ही नहीं, हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम, जिसका उद्देश्य होता है जन साधारण को संतुलित एवं स्वस्थ आहार के लिए प्रेरित किया जाए, साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में भी उनको जागरूक किया जा सके। अब हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के तरीके हो सकते हैं या किस तरह की चीजों का मिलावट किया जाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि खाद्य पदार्थों में उनके आकार और बाहरी संरचना से मिलते जुलते पदार्थों की ही मिलावट की जाती है। उदाहरण के लिए दैनिक उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, सबसे पहले हम दूध का उदाहरण लेते हैं। दूध में पानी, चॉक पाउडर, साबुन, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रसायन होता है, यूरिया, यह सब मिलाया जाता है जिससे उल्टी, दस्त या फूड पॉइजनिंग, जिसको खाद्य विषाक्तता भी कहते हैं, यह सब हो सकता है। चॉक पाउडर, यूरिया आदि यह सब तो उसको गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। साबुन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, झाग और हाइड्रोजन परऑक्साइड इसलिए मिलाया जाता है, यह एक रसायन है जो कि बहुत देर तक दूध को खराब नहीं होने देता है। उसी तरह घी, पनीर और मक्खन में मसले हुए आलू, वनस्पति तेल, स्टार्च पाउडर आदि मिलाया जाता है जो आंत और पेट के रोग पैदा कर सकता है। अनाज जो होते हैं जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि, इसमें धूल, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, रेत या फिर खराब और सड़े हुए अनाज भी मिला दिए जाते हैं, जिससे लीवर में विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि लीवर हमारे जो शारीरिक क्रियाएं जो प्रारंभ होती हैं उसके लिए लीवर सबसे मुख्य ऑर्गन या अंग है। दालों में उनके रंग के लिए रासायनिक रंग और लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट का रंग पीला होता है, यह एक रसायन है, तो उसको मिलाया जाता है जो पेट संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है। साथ ही चीनी में यूरिया और चॉक पाउडर, तो काली मिर्च में सूखे पपीते का बीज मिलाया जाता है जो पेट और लीवर की बीमारी का कारण हो सकता है। सरसों में आर्गमोन के बीज मिलाए जाते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह देखने में होता है और यह पेट में मरोड़ का कारण भी हो सकता है जिससे कि उत्सर्जन क्रिया में वृद्धि होती है। खाद्य तेलों में भी मिलावट की जाती है। जो मिलावटी तेल हैं वो है मिनरल ऑयल, अरंडी का तेल या अन्य हानिकारक तेल। उसी तरह चाय की पत्ती में कृत्रिम रंग या उपयोग की गई पत्ती मिला दी जाती है। तो कॉफी में इमली के बीज का पाउडर डाला जाता है। इन सब से हमारा यकृत या लीवर प्रभावित हो सकता है। हल्दी पाउडर में मेटानिल पीला रंग, लेड क्रोमेट, लकड़ी का बुरादा आदि मिलाया जाता है जो पेट के रोग के साथ साथ कैंसर का भी कारण हो सकता है। मिर्च और धनिया पाउडर में भी कृत्रिम रंग, सीसा जिसको लेड कहते हैं, ईंटे का चूर्ण आदि मिलाया जाता है जिससे धातु विषाक्तता या मेटल पॉइजनिंग जिसको कहते हैं वो मुख्य रूप से होता है और यह ट्यूमर और ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत भी उत्पन्न कर सकता है। गुड़ में मिला होता है वॉशिंग सोडा और चाक पाउडर। उसी तरह फल और सब्जियों में भी कई तरह के केमिकल्स या रासायनिक रंग, कैल्शियम कार्बाइड, रासायनिक रंग उनको चमक देने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड उनको जल्दी से पकाने के लिए, सैक्रीन वैक्स वैक्स उनको मीठा बनाने के लिए और ऑक्सीटोसिन आदि उनकी बढ़त के लिए दी जाती है, और ये सभी पेट, लीवर और किडनी आदि में विकार उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबे समय तक इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने से कैंसर की भी संभावना रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजों में और भी मिलावट की जाती है, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचने की कोशिश करें। बचने के उपाय क्या हैं, सरकारी तंत्र भी हैं और घरेलू उपयोग में आने वाली चीजों को भी हम देख सकते हैं कि वह मिलावटी है या शुद्ध है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए हमें हमेशा FSSAI, जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय

0: खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो खाद्य वाली जो वस्तुएं हैं उनकी शुद्धता का मानक तय करता है। तो इनसे प्रमाणित सामानों को ही खरीदना चाहिए और खरीदते समय भी यह देख लेना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट या उसको प्रयोग करने की तिथि, अंतिम तिथि क्या है। इसके लिए एक तरीका यह भी है कि हम सस्ते और खुले सामानों को खरीदने से बचें और जो सामान लेते भी हैं उनकी गुणवत्ता की जांच कर लें घरेलू स्तर पर। और इसके लिए सबसे सुविधाजनक है डार्ट। डार्ट एक पुस्तिका है जिसका पूरा विस्तार किया जाए तो यह है डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट। यह पुस्तिका FSSAI के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है और आसानी से मिल भी जाती है। और जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है यह है कि हम घरेलू सामानों से भी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जाँच कर सकते हैं। जैसे दूध में पानी की जांच के लिए हम एक बूंद किसी सतह पर डाल देंगे, यदि बहते समय एक सफेद धब्बा रह जाता है सतह पर तो इसका मतलब दूध मिलावटी नहीं है। उसी तरह दूध में डिटर्जेंट की जांच के लिए ठंडा पानी डालकर हिलाएंगे, अगर उसमें झाग बनता है तो वह दूध अशुद्ध है। साथ ही अशुद्ध दूध उबलने पर एक पीले रंग की सतह बनाता है। घी की जांच के लिए पिघले हुए घी में हम थोड़ी सी चीनी मिला देंगे, अगर मिलावटी घी होगा तो चीनी का रंग तुरंत लाल हो जाए। खोया या पनीर की शुद्धता की जांच के लिए भी पानी के साथ आयोडीन बूंदे या टिंचर आयोडीन डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टार्च मिला होता है और स्टार्च आयोडीन के साथ नीला या काला रंग देता है, तो अगर नीला या काला रंग आ रहा है तो यह मिलावट का संकेत है। अनाज, दाल, गेहूं इत्यादि को हमें सीधे प्रयास करना चाहिए कि स्थानीय बाजारों से या किसानों से खरीदें तथा उसके बाद उसे अच्छी तरह साफ करके साबुत अनाज को ही पीसकर उसको प्रयोग में लाएं। यही बात मसालों के लिए भी लागू होती है। खड़े मसाले खरीदें, जो संभव हो उनको धो लें और उसके बाद उनको घर में ही पीसकर उनको उपयोग में लाएं। इससे क्या होगा कि हम कम से कम मिलावट से प्रभावित होंगे। शहद है, शहद स्वास्थ्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी शुद्धता के जांच के लिए रुई भिंगाकर उसको जलाएंगे, अगर जल गया तो शुद्ध है, नहीं तो वह कृत्रिम है। अगर पानी में डालने पर नीचे बैठ जाता है शहद तो वह शुद्ध है। चाय की पत्ती के में मिलावटी रंग के लिए पानी डालकर एक सफेद कागज पर उसको रगड़ें, अगर उस पर दाग पड़ता है तो इसका मतलब चाय में मिलावट है। कॉफी में भी पानी में आसानी से नहीं घुले तो इसका मतलब यह मिलावटी है। उसी तरह केसर, जिसको हम मिठाइयों में या खीर इत्यादि में डालते हैं, वह ठंडे पानी में आसानी से घुल जाती है और आसानी से टूटती नहीं है, तो इसका मतलब यह शुद्ध है। हल्दी की शुद्धता के जांच के लिए ठंडे पानी में डालने पर अगर रंग गहरा है तो वह अशुद्ध है। मिर्च को भी अगर हम ठंडे पानी में डालेंगे तो उसमें ज्यादातर ईंट का चूर्ण मिला होता है तो वह नीचे बैठ जाए। काली मिर्च में पपीते का बीज होता है तो अगर उसमें पानी को में डालेंगे काली मिर्च को तो पपीते का बीज ऊपर तैरता रहेगा। फल और सब्जियों को प्रयोग करने के लिए हम इस तरह का कोई तरीका अपना सकते हैं या फिर सबसे बेहतर होगा कि उनको पानी से कई बार धोकर और तभी उनका इस्तेमाल करें। उसी तरह खोआ, पनीर इत्यादि से बनी हुई मिठाइयों में को भी प्रयोग करने में रंग वाली मिठाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे, क्योंकि खाद्य वाले रंग उसमें कम ही होते हैं। और जो वर्क लगी मिठाइयां हैं उनके प्रयोग से भी हम बचेंगे, क्योंकि वह चांदी का वर्क नहीं एल्यूमिनियम का होता है और एल्यूमिनियम धातु विषाक्तता उत्पन्न करता है। आजकल कई कार्यक्रमों में आइसक्रीम की जगह फ्रोजन डेजर्ट का चलन है, तो फ्रोजन डेजर्ट की जगह हम आइसक्रीम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्रोजन डेजर्ट में जो है उसमें वनस्पति तेल का फैट होता है जबकि आइसक्रीम में दूध का फैट होता है। तो इसलिए अगर दोनों में आपके पास च्वाइस है तो आप आइसक्रीम को ही उपयोग में लाएं, हालांकि उसमें भी दूध अगर मिलावटी होगा तो वही बात होगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में उपयोग आने वाली खाद्य पदार्थों को विश्वसनीय विक्रेताओं के यहाँ से ले आएं और ले आने के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच करें। जांच करने के बाद ही उसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हम अच्छा खाएंगे।
1: कहो पारो।
2: हाँ दीदी,
1: बड़ा भाई मगन हुए कि सुनत लू है, कहे कि सुनह की भी चाहिए, कहे से कुल घर इतनी बदे। ई बड़ी नीके का जानकारी रहला कि बहिन लोग अपने घर में भी जोन है अपने स्तर से भी अगर सामान में मिलावट हो तो ओके पता कैसे करनी।
2: हाँ।
1: तो डॉक्टर ज्योत्सना जी जोन है बड़ी नीके का जानकारी बहिन लोगन के देनी है। अब कहीं आगे का सुनाओ तो
2: आगे हम एगो गीत सुनाओ थी बड़ा बढ़िया के, तो बहन लोग गीत सुने और मन मन साइन करे
1: सुने
2: हम लोग के सुनल जाओ।

0: कहो पारो।
1: बड़ा बढ़िया के गीत रहल है दीदी, मन झूमे लागल, बहिन लोग भी झूमत हुई। हाँ ये दीदी,
0: हाँ
1: कुछ लाइल हो का पिटारी में? बहुत महकत हवे,
0: अरे
1: का लाइल
0: भाई
1: हो?
0: कहीं न कि
1: हाँ
0: अपने
1: दीदी,
0: पिटारी के बात कैलू है तो अब हम लोग जोन हो जानकारी के बात सुनौलू, गीत गौन वही सुनौली, और खैला पिला के बात ना हो ना तो भाई
1: हाँ
0: कुछ अधूरा सा लगेगा। तो कहीं कि हम देखा बढ़िया सा जोन हो कि स्वास्थ्य वर्धक खैली पे के एनर्जी ताकत मिली और लोगन के अच्छा भी लगी, हरी खड़ी मूंग के जोन दाल दाल नहीं।

0: माने खड़ा मूंग जो होला ओकरा हम चीला बताओ चल थीला करे के का हो कि खड़ा मूंग आप ले लेवे और खड़ा मूंग के जितना भी आपके घर में सदस्य हो
1: सामग्री मात्रा कितना रही यो दीदी बतावल जाओ
0: भाई ये हो कि तोरे घर में सदस्य कितना हुआ पांच सदस्य हुए दो लोग बाहर के घर में दुए लोग खाए वाले बाहर तो वो हिसाब से आप मूंग ले लें मान ली एक पाव मूंग ले लू ठीक है और मूंग लगा क्योंकि रात भर भिगा दे खूब बढ़िया से पहले साफ कर लो मैं कंकड़ मिट्टी ना रहे ओके साफ करके खूब रात में बढ़िया से भिगा दे जब सवेरे के पानी निथार के दो दिन पानी से साफ करके ओके अलग से रख दे पानी निथर जाए एक बात जो है ओके अब भाई अब तो लोगों के घर में मिक्सी हो गई हुआ है
1: तो मिक्सी ना हो के तो सिल्वर पर भी पीस जा सके
0: हाँ तो अगर ओके हो तो फिर वही हरी मूंग में जो है हरा मिर्चा डाल दें हरी धनिया डाल दें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दें और उनमें जीरा डाल दें और थोड़ा सा जो है लहसुन के दो चार पांच कली भी डाल दें ठीक है एक ही सब बढ़िया सा डाल के खूब पीस लें और पीसें एकदम पानी की तरह ना पीसें और ना ही बहुत मोटा पीसें ऐसा पीसें कि जैसे हम लोग चीला बनाई ला वो तावा पर फैलावा भर के रहे
1: ठीक है तो
0: हाँ अब एक ही थोड़ा देर रख दें भाई थोड़ा सा जो सामग्री हो उसमें खूब भीन जाए बढ़िया सा तो कम से कम 15-20 मिनट तक एक छोड़ दें उसके बाद खूब एक जो है खूब बढ़िया सा फेंट लें और फेंटने के बाद में थोड़ा नमक डाल दें ठीक है नमक को टाइम डालें जबकि आपके बनावे के हो एक बार जो हो खूब बढ़िया सा जो है तवा गर्म कर लें और खूब ना मध्यम आँच रहे और ना बहुत तेज आँच रहे माने जो हो कि आँच ऐसा न रहे कि जैसे कि धीमे आँच पे अपन ओके सामान फैला दें
1: जलो ना मतलब
0: हाँ ओके फैला दें
1: तेज ना हो
0: और फैला के ओके जो हो जैसे आप चीरा बनावे नहीं ओके बना लें और कभी कभी देखा हम लोग ये भी कर ले रहे कि भाई बच्चन के लगला कि एकदम सूखा सूखा लगा था या ना लगा था तो हम लोग महतारी लोग उसके सोच ला कि कैसे भी बच्चे के खिलाओ के तो हमें थोड़ा प्याज हो थोड़ा टमाटर हो थोड़ा जो है गाजर हो एक भी कद्दूकस के या महीन महीन काट के जो है और हल्का सा फ्राई करके मान लो कि थोड़ा सा तेल में या घी में करके और वही में डाल के भर के जो है जैसे रोल करके बच्चन के खियावल जलाना है हम लोग सोच ला ना कि भाई जैसे डोसा बनाना
1: ध्यान रखा था दीदी बच्चन के भी एकदम ध्यान रख के बतावत थी बड़ा बढ़िया से बतावत
0: भाई हरी चटनी के साथ हो चाहे मीठी चटनी के साथ बच्चन जैसन भी पसंद करत हो उनके खियावे
1: हाँ दीदी तो ये तो बात भईल अब खैले के
0: अब हम कहेंगे कुछ तो हूँ बता दे पहले लोगन के
1: हाँ हम बेल के गुड़ बतावत है कि बेल इसमें गर्मी में कितना फायदेमंद होला तो ये पेट खातिर तो बहुत फायदेमंद होला जैसे कब्ज भइल गैस भइल और अपच भइल इसको दूर करे मदद करेला और पाचन शक्ति मजबूत करेला और भूख भी बढ़ावेला और गर्मी में बेल के शरबत शरीर में ठंडक ठंडक देला और लू से भी बचाव करेला कहीं से आई थके हारे तो पी ली तो
0: अरे इतना ना ही पारो हम कहें कि जो बेल पत्र बाना एक ही तो भाई हम लोग पूजा पाठ में भी जो ली आईला जो उपयोग में और साथ साथ में ये भी कर ला कि जो बेल पत्र का जो एकदम मुलायम वाला पत्ती होला ना कुछ लोग जो कि शुगर होला लोग कहा ना कि भाई जो डायबिटीज हो गए मधुमेह हो गल हो गए तो कहें कि उनमें भी एक पत्ता के चबैले से लोग कहना कि थोड़ा सा उनके अच्छा लगेला
1: मैंने ये मधुमेह दिल और दिमाग खातिर भी लाभकारी होला और बेल जो होला ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे में मदद करेला
0: कहीं ना कि भाई एक विशेष जानकारी हो विशेष सूचना हो बहन लोगों के हम बता दें कि अपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने पर जो कार्यक्रम हर जगह से प्रसारित होता हो पे हम लोग भी जो है कि सजीव फोन इन कार्यक्रम जो है कि 26 तारीख के सुनावल जाए वही लोग अपने रेडियो से संबंधित जवन भी उनका कहला कि सुनर चाहत हो या उनका जो वो विषय में जानकारी हो उपे वो सीधे पूछ के बात कह के हम लोगों से जो है कि अपन बात कैसे कहनी और साथ में कहें कि कैसे बात करी है का पे हो
1: फोन नंबर बतावल जा हाँ तो 05-4-2-2-2-2-3-2-1-0-5-2
0: अरे हम ऐसे कही ना कि 05-242-2-2-2-1-0-5-2 हाँ इस पे बहन लोग जो है सीधे फोन करके 26 तारीख के अपने रेडियो के जो अनुभव हो ओके बांट सके नहीं ओके सुन सके नहीं तो कहें कि यही के साथ अब कार्यक्रम का समय हम लोग का समाप्त होता है और चला चल जाए
1: नमस्ते।

महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडेय। पहले सुनते हैं इनका गाया एक खेमटा।

0: इस गंगा गीत के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त तो होता है। कलाकार थे अमलेश कुमार पांडे। इनके गाए कुछ लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे 2 बजे मिडडे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज।

0: ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित दो स्थानों

0: पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश का शेष भाग।

0: Our people are so excited.
1: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: अरुण सर, थोड़ा सा कलम में हम भी शिकायत आज करेंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा लंबा ट्यून बनाया था।
1: हाँ, लंबा ट्यून में होता क्या है कि 2-4 मिनट हो जाता है तो श्रोताओं को फिर जैसे आपको शिकायत होती है वैसे दूसरे को भी होने लगती है। हालांकि जब अपना मौका मिलता है तो हर कोई चाहता है कि 10 मिनट बात हो जाए।
2: एकदम करेक्ट।
1: और दूसरे से जब अब बातें होती हैं तो वो फिर होता है कि आप ज्यादा बड़ी बात करते हैं, लंबी बात करते हैं।
2: नहीं, कार्यक्रम में वही बात होना चाहिए जो रेडियो से जुड़ा है, जो
1: हाँ, क्योंकि देखिए इसी एक घंटे में ही सब कुछ करना होता है ना। तो लोग सोचते हैं कि बात कर ले तो यूं बात करने का कोई मतलब नहीं जब तक कि वो प्रोग्राम के लायक ना हो।
2: नहीं नहीं, सही बात है।
1: तो अब आप शुरू हो जाइए अशोक जी।
2: आवाज के दुनिया के दोस्तों, एक कार्यक्रम चलता है हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, ये आवाज हम लोग की हर कोने कोने देशों में YouTube के जरिए और कार्यक्रम के जरिए, रेडियो के जरिए फैलता हुआ प्रोग्राम में हम कॉल लगाते हैं 222-10-52 यानी 222-1052। प्यार भरा नमस्कार अरुण सर
1: जी। नमस्कार अशोक जी, अब बताएं आप भी कुछ शिकायत करना चाहते हैं लगता है।
2: जी, हम शिकायत ये करना चाहते हैं, आज हमारी बातचीत आपसे सही हो रही थी, इसके पहले ना आवाज जो लड़ के आती है ना वही शिकायत था।
1: तो आज लड़ाई नहीं हो रही है, आज तो आवाज अभी आपकी ठीक आ रही है। कई बार जब लोग गाने लगते हैं ऊंचे पिच में तो हमें लगता है तब आवाज फंसती है थोड़ी सी।
2: हाँ, वही हम भी सोच रहे थे, इसके पहले कई मरतबा ऐसा हुआ कि आवाज लड़ के आ रही है तो हम लोग कान के हटा के बात कर रहे थे।
1: हाँ, वो सीटी जैसी आवाज आने लगती है।
2: हाँ,
1: तो आज तो ठीक है। तो अब अच्छा, वही शिकायत थी जो आज अपने आप ही दूर हो गई है।
2: हाँ, आज देखिए कान में मैं लगा के बात कर रहा हूँ, ठीक है।
1: हाँ हाँ हाँ, तब तो ये शिकायत दूर हो गई। अब हाँ, हमारी ये शिकायत है कि आप अपना नाम भेजा करें अपने घर परिवार का और दूसरे लोगों का। जैसे आप नाम 3-4 भेजते हैं तो व्हाट्सएप में अब हम लोग ये करते हैं कि खासतौर से हम की एक बार ही एक में से नाम लेते हैं। अच्छा, और जिसको भी जैसे होगा, इमृति जी की तो बात ठीक है कि वो मैसेज नहीं कर सकती हैं, लेकिन बाकी लोग जो मैसेज कर सकते हैं उनको मैसेज करने दीजिए।
2: चलिए ठीक है अरुण सर, ये आपका वड़क्कम प्यार रहेगा।
1: अब आप हमें वड़क्कम बताइए, कौन सा गाना आज सुनाएंगे आप?
2: हाँ, एक गाना का नाम है आज देना मैं जरूर चाहता हूँ अरुण सर, और फिल्म जान तेरे नाम, उसमें गाना है रोने न दीजिएगा, इसी तरह गाना है।
1: अच्छा, इतना ही गाना है? लगता है भीड़ में हैं आप अभी।
2: जब दुकान पर रहते हैं ना, तो
1: हाँ हाँ हाँ, तो अभी काम काज ठीक चल रहा है? हालांकि गर्मी का बहुत मौसम है, दुकान में क्या इंतजाम है? पंखे का है?
2: पंखे का अनुसर है और कानंदे दरवाजे पर कानंदे गेट पर लगा दिए, कानंदे
1: हरा वाला
2: पर्दा, हरा वाला पर्दा लगा दिए कि छन के हवा आएगा, धूप कानंदे रोकेगा
1: और छन के आएगा तो ग्राहक भी बाहर से देख पाएंगे कि अंदर जो है कारोबार अशोक जी का चल रहा है।
2: जी जी जी।
1: हाँ, क्योंकि दुकान खुली हुई भी दिखाई देनी चाहिए।
2: हाँ, नहीं नहीं, खुली हुई है, पर्दा लगा हुआ है, लोग समझ जाएंगे कि नहीं पर्दा लगा हुआ है, अंदर काम हो रहा है।
1: बिल्कुल, अब हम आपको गीत सुनवा दे रहे हैं, फिल्म है जान तेरे नाम। नमस्कार, शुक्रिया अशोक जी।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते, स्वागत है। अब बताइए, कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है लग रहा है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। अच्छा देवोजीत जी हैं।
1: मेरा शुभ नाम है देवोजीत दास और मेरा गांव का नाम है बदरीपार डिस्ट्रिक्ट आसाम से। शुभ की शुरुआत कॉलेज से होती है, जिंदगी में शुरुआत जानती है।
0: तो ये जो सीटी की आवाज आने लग रही है, कुछ अगर ऐसा है स्पीकर पे कर रहे हैं क्या? यही हम कह रहे हैं, सीटी जैसी आवाज आ रही है।
1: दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी कौन सी है? मुस्कुराहट और आक्रम, वो दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं ऊपर सबसे खूबसूरत हो जाती है,
0: जी।
1: सबसे प्यारी होती है।
0: और आप हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं, उतनी दूर से आसाम से आप हमें सुनते हैं, तो हमारे यहाँ भी मुस्कुराहट और खूबसूरती प्रोग्राम में आ जाती है। आपके यहाँ मौसम कैसा है? हम लोग के यहाँ तो बहुत तेज गर्मी है, हालांकि आपके इलाके में हो सकता है कि बारिश के आने जैसी स्थिति हो।
1: हमारे यहाँ पर आज तो बारिश नहीं।

0: बहुत अच्छा है मौसम।
1: जी बारिश नहीं है तो मौसम अच्छा है, यानी गर्मी नहीं है इतनी जिधर हम लोग के इधर इतनी गर्मी है।
0: गर्मी है,
1: और आपका काम काज जो होटल वगैरह का है वो कैसा चल रहा है?
0: बहुत ही बढ़िया चल रहा है।
1: जी, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, सिर्फ हेलो फोन इन फरमाइश सुनते हैं या फिर कुछ और भी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
0: हेलो फॉर इन्फॉर्मेशन सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी, देवजीत जी, अब आप लोगों के नाम लीजिए, उसके बाद फरमाइश बताइए।
0: पहले मेरा एक गाना मेरा परिवार में सुना गया,
1: जी
0: मेरा पिताजी है जितिन कुमार दास और माताजी त्रिपुरानी दास, बड़े भैया जगजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी,
1: जी
0: और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा। पहले मेरा असम त्रिभुवन जलाशय है, मेरे बड़े भैया अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी छोटे बाबा भट्टाचार्य जी, दादा है बप्पन आचार्य, और प्रेमजी दादा, रामतो भाई, और मेरा दादा है राजा मराकर,
1: जी जी
0: और हैदराबादी से मेरा बहन बाबली दास और बाबली दास।
1: अब आप चूंकि उतनी दूर से हमें फोन करते हैं इसलिए आपको हम लोग निराश नहीं करना चाहते, आपके बताए हुए सारे नाम प्रोग्राम में रख लेते हैं। अब बता दें गाना कौन सा आज सुनेंगे आप?
0: गाना फिल्म का नाम है सार, गाने का बोल है, सुन सुन सुन बरसात की धुन, सुन बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गर की सिमट गए हम। ये गाना कुमार सानू का आवाज में गाना।
1: ठीक है, गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। देवजीत जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: तो आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी, हमें भी शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर,
0: नमस्ते, स्वागत है। इमरती, आप यूं ही खुश रहें, कितनी भी तेज गर्मी पड़े आपकी खुशी हम लोगों के लिए बहुत
1: गर्मी
0: मायने
1: तो
0: रखती है।
1: पड़ रही है सर,
0: हाँ,
1: गर्मी तो
0: लेकिन
1: बहुत
0: ये कि
1: पड़ रही
0: आपको
1: है।
0: घर में रहना रहता है तो उतनी दिक्कत नहीं है, और
1: हाँ, लेकिन
0: बाकी
1: सर
0: तो
1: जो है ना कि मतलब हम लोग का 2 मंजिले का मकान में सर बहुत गर्मी तपता है।
0: अब इस साल या साल दर साल गर्मी का मौसम जब जब भी है तो गर्मी उसमें तेज कुछ दिनों की तो होती है।
1: हाँ, होती है।
0: जी,
1: और बताएं
0: और
1: कैसे हैं।
0: हम लोग अच्छे से हैं, और आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आपके नाम वगैरह भी शामिल हो रहे हैं, और आपका फोन लग जाता
1: हाँ,
0: है तो खुशी होती है कि
1: मेरा
0: अब आप
1: फोन लग
0: हमारे
1: जाता है
0: बड़े
1: सर, दिल
0: रेगुलर
1: लगाते हैं,
0: श्रोता हो
1: प्रयास
0: गई हैं।
1: करते हैं, दिल से तो फोन लग ही जाता है।
0: जी, अब ये करना है कि प्रयास करना है कि कोई आपके लिए लिख दे, और पत्र के लिए धन्यवाद वगैरह में भी आपके

0: मेल आए तो
1: चलिए
0: अच्छा
1: हमारे
0: है।
1: दोस्त ही हैं जो लिखेंगे उस सबसे के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में, क्योंकि हम तो नहीं लिख पाएंगे सर।
0: हाँ, प्रोग्राम के जरिए आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपका कहना मान लेते हैं, आपके नाम भेज देते हैं, तो ये तो खुशी की बात है जी। मृति, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज हमको सुनना है तुमसे
0: आवाज कट कट,
1: अच्छा कौन,
0: तुमसे अच्छा कौन?
1: उसमें 2002 में जो आई थी मूवी वही वाला है। हाँ टाइटल सॉन्ग है, चांद तारे फूल सनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल सनम तुमसे अच्छा कौन है।
0: बिल्कुल, आप अच्छे से गा भी रही हैं। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल हैं, और तौसीफ जो आपने बताया, तौसीफ अख्तर की आवाज है
1: बहुत अच्छा गीत लगता है
0: जी। और
1: हमें।
0: ये गीत अच्छा जो आप जो कह रही हैं वो आपके रेडियो पर, मोबाइल पर पहुंच रहा है इस प्रोग्राम के जरिए। बहुत शुक्रिया मेरे, नमस्कार।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 NIT 21052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। ये प्रोग्राम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। और प्रोग्राम हमारे आकाशवाणी वाराणसी के आप मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेव्स OTT पर एक साथ सुन सकते हैं। तो आपके फोन कॉल का हमें इंतजार रहेगा। आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। तो आपको बता दें कि पिछले बुधवार को हुई रिकॉर्डिंग के शेष कॉल्स यानी प्रोग्राम का अगला भाग आप सुन पाएंगे कल दिन में 12 से 1 बजे के बीच। साथ ही हमारे केंद्र से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाएं pkld@varanasi.gmail.com पर। और ये प्रोग्राम यानी पत्र के लिए धन्यवाद प्रसारित होता है रविवार शाम 7:31 पर। साथ ही सोशल मीडिया का दौर है तो आकाशवाणी वाराणसी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है, जरूर वहां ज्वाइन करें और कार्यक्रम को देखें सुने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,243 किलोहर्ट्स। न्यू सोनिया ईयर ऐप DTH DRM 1,233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर शाम के 5 बजे हैं आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथियों, जय हिंद जय हिंद। सुमेरी दी
1: जय हिंद बच्चों, जय हिंद सुरेखा दीदी।
0: कैसी हैं
1: भाई? हम तो अच्छे हैं, और हमारे नन्हे दोस्त भी अच्छे ही होंगे।
0: बिल्कुल अच्छे होंगे भाई। उनकी तो कहते हैं ना, बहुत मस्ती होगी इस
1: हाँ,
0: समय।
1: क्योंकि स्कूल की
0: परीक्षाएं खत्म
1: छुट्टियां हो
0: हो
1: गई
0: गई
1: हैं।
0: होंगी, लेकिन गर्मी भी बहुत है ना। और इस गर्मी में बच्चों, थोड़ा सा आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि आपके मम्मी पापा आपका ध्यान तो रखते ही होंगे।

0: और घर में जो सदस्य हैं, दादी नानी जो भी होंगी, वो सभी आपका ध्यान रखती होंगी, लेकिन अपने से अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे कब किस चीज की आवश्यकता है ये हम ही जान सकते हैं ना। जैसे
1: बिल्कुल
0: बच्चों,
1: दीदी,
0: आपको अगर प्यास लगी है तो तुरंत पानी पीजिए, इस बात का इंतजार मत करिए कि माँ आए और 4 बार कहें कि बेटा पानी पी लो, बेटा खाना खा लो, क्योंकि छुट्टियां हैं ना दीदी, तो बच्चे बड़ा आलस सा करते हैं, है ना,
1: और उधम
0: लापरवाही
1: भी बहुत
0: करते
1: मचाते
0: हैं।
1: हैं, क्योंकि दीदी इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो नन्हे दोस्तों, आप गर्मी पड़ रही है और आप सोचें कि इंडोर गेम्स ना खेलकर हम मोबाइल पे गेम खेल लें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
0: हाँ, और इसमें देखिए दोस्तों, मेरी एक शिकायत है आप सबसे, वो ये है ना कि जब छुट्टियां हो जाती है और गर्मी में, तो मम्मी पापा कहते ही हैं कि बाहर मत जाओ, कमरे के अंदर बैठो, घर के अंदर जो करना है करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ काम करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ खेल लो अंदर ही, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना,
1: मोबाइल लेके बैठ
0: मोबाइल
1: जाते
0: लेके
1: हैं।
0: बैठ जाते हैं, और उस समय उन्हें भूख और प्यास का कोई अंदाजा नहीं लगता है।
1: बिल्कुल दीदी, जब हम मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते इतना समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या चल रहा है,
0: और
1: उसमें इतना खो
0: दोस्तों
1: से जाते हैं।
0: और बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये स्क्रीन जो है ना, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं ना, अभी आपका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होना बाकी है, उसमें आंखें बड़ी अनमोल हैं। है तो वैसे शरीर के सभी अंग बहुत अनमोल हैं, लेकिन आंखें बहुत ही ज्यादा अनमोल हैं।
1: बिल्कुल दीदी, मोबाइल से या लैपटॉप से जो ब्लू रेज निकलती है ना, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और पता है क्या होता है, जब हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, तो गेम खेलते खेलते हम संतुलित आहार, जो प्रॉपर घर का खाना होता है ना, वो ना खा के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे मोटापा भी बढ़ता है और आलस भी बहुत आता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
0: हालांकि मुझे पता है कि काफी सारा होमवर्क और बहुत सारे कार्य आपके मोबाइल पे ही आते होंगे, तो ठीक है, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, लेकिन कोशिश करिए कि उन सारी चीजों को बुक से ही पढ़ा जाए, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आजकल लिखने की भी आदत बहुत छूट गई है, तो लिखने की भी आदत डालिए, क्योंकि परीक्षा ही तो अभी आपको देनी ही है, और पढ़ने की भी किताब से आदत डालिए तो बहुत अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर के स्क्रीन से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल दीदी, हालांकि प्रोजेक्ट वर्क या होमवर्क, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ऑनलाइन मिलती हैं, पर उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा जितना जरूरी है उतना यूज करें, बाकी फिर अपना बुक्स से पढ़ें।
0: और पढ़ाई के साथ साथ कुछ गीत वगैरह भी सुन सकते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना, वो आप स्पीकर लगा के थोड़ा कम वॉल्यूम में आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से सुन सकते हैं।
1: मनोरंजन भी जरूरी है भाई।
0: तो चलिए हम भी मनोरंजन करते हैं अपने बच्चों का।

0: भाई मनोरंजन तो हो गया
1: अब
0: और
1: थोड़ी
0: मुझे
1: सी
0: लगता है कि बच्चों को बहुत ये गीत पसंद भी आया होगा।
1: दीदी, अब थोड़ी सी जानकारी भी ले लें। और हमारी रोचक दीदी जो है ना, वो जानकारी बड़े रोचक ढंग से और ज्ञानवर्धक तरीके से देती हैं।
0: तो क्यों ना बच्चों को सुनवाएं रोचक दीदी का ये खजाना।
2: बच्चों नमस्ते, रोचक दीदी आ गई है आज फिर लेकर जानकारियों से भरा अपना पिटारा। तो आज रोचक दीदी के पिटारे से क्या निकलेगा? तो सुना आपने बच्चों, इस आवाज को सुन के क्या याद आया? अरे भाई, जब छुट्टियां होती हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा मौसी या अपने गांव जाने के लिए हम किस परिवहन माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? अरे भाई, आपकी और हमारी पसंदीदा ट्रेन। और क्या, तो चलिए आज इसी ट्रेन में बैठकर थोड़ा समय में पीछे चला जाए और आपको बताएं कि अपने देश भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। बच्चों, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, है ना? वैसे सामान पहुंचाने के लिए भी ट्रेन का उपयोग किया जाता है और समय के साथ ट्रेन में और स्टेशंस पर जो सुविधाएं हैं उनमें काफी बदलाव आया है। आपको बताएं बच्चों, भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। देश में पहली ट्रेन साल 1853 में चलाई गई। 16 अप्रैल साल 1853 के दिन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी पहली भारतीय यात्री ट्रेन। और अब आप पूछेंगे कि विश्व की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी दीदी? तो आपको बताऊं, 27 सितंबर 1825 के दिन विश्व की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बच्चों, कोयले और भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 सितंबर 1825 के दिन भाप इंजन की सहायता से रेल के डिब्बों को खींचा गया जिसमें कई यात्री सवार थे। इंग्लैंड के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन के बीच चलाई गई थी ये ट्रेन। जरा सोचिए तो, आज नई टेक्नोलॉजी के चलते ट्रेनों की रफ्तार बेहद तेज हो गई है और ट्रेनें भी कई प्रकार की हो गई हैं। थोड़ा उस समय के बारे में सोचिए बच्चों, जब पैदल या घोड़ा गाड़ी पर चलने वाले लोग पहली बार ट्रेन के डिब्बों में बैठकर सफर के लिए चले होंगे। कितनी रोमांचक यात्रा रही होगी वो, है ना? वैसे आज भी ट्रेनों की यात्रा कम रोमांचक नहीं है भाई। जब ट्रेन के डिब्बे सरपट इंजन से लगकर दौड़ते हैं और खिड़की से बाहर झांकने के बाद पेड़ मकान पशु पक्षी सब पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो बस लगता है कि हमारी ही रफ्तार सबसे तेज है। आज भी ट्रेन का सफर बेहद रोमांचित करता है। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप ट्रेन से कहाँ जाएंगे? सोचिएगा जरूर। फिलहाल रोचक दीदी अपना पिटारा आज यहीं समेटेगी, फिर से आपसे मिलने आऊंगी। बाय बाय।
1: दीदी, रोचक दीदी की जानकारी तो हमेशा की तरह बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक थी।
0: बच्चों, आपको एक बात बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपके आंगन में, आपके छत पे, आपके आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं ना, वो सिर्फ पेड़ पौधे हैं। आप उनको उसी दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन आपको पता है, आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जीवंत होते हैं, जीवित
1: बिल्कुल
0: होते हैं
1: दीदी,
0: ना,
1: उनमें
0: हवा
1: जीवन होता
0: पानी और
1: है, वो भी
0: रोशनी से।
1: हाँ,
0: वो तीनों से ही इनका जो है विकास होता है।
1: वो भी सांस लेते हो जानते हैं, जब हम उन्हें छूते हैं, उन्हें पानी देते हैं, तो वो भी खुश होते हैं।
0: खुश होते हैं।

0: थोड़ा ध्यान से उन्हें अपना दोस्त बनाकर देखिए ना, तो आपको लगेगा कि वाकई ये तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पेड़ पौधों को अपना दोस्त तो बनाए ही, साथ ही साथ पेड़ पौधों में भी इजाफा करें, यानी कि अपने घर पर, अपने छत पर, आपके आसपास कहीं जगह है तो वहां भी पेड़ पौधे लगाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं, अभी
1: उनकी
0: देखिए,
1: देखभाल भी
0: हाँ,
1: करें,
0: उनकी देखभाल
1: सुबह
0: भी
1: शाम
0: करें,
1: पानी दें, क्योंकि इस समय
0: बिल्कुल।
1: गर्मी बहुत
0: और
1: ज्यादा पड़ रही है।
0: हाँ, और मुझे पता है बच्चों कि ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। देखिए, बात करते करते तो ऐसा लगता है ना कि कितनी सारी बातें आपको बता लूं, लेकिन हर काम का अपना एक समय होता है। हमारा भी चलने का समय हो गया है, हम फिर आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद
1: जय
0: बच्चों।
1: हिंद।

अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, नन्ही दुनिया, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने, युववाणी।

0: सा जिन पंक्तियों के साथ करती हूँ, धरती से आसमान भी हारा दिखाई दे, मुमकिन है कल को ये भी नज़ारा दिखाई दे। कमजोरियों का आईना अपने को मत बना, ऐसा ना हो तो वक्त का मारा दिखाई दे।
1: पंक्तियाँ भले ही बस शार हैं इसमें, मगर बात तो गहरी है ना दोस्तों, क्योंकि वाकई में कभी कभी हम खुद को इतना लो फील करा देते हैं कि हमें लगता है बस हमसे बुरी दशा तो किसी की हो ही नहीं सकती।
0: तो अगर कभी आपको भी ऐसा महसूस होने लगे ना, तो अपनी युववाणी से जरूर मिल लीजिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ आते ही हैं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो इसी गर्मजोशी के साथ कीजिए कबूल अपनी युववाणी और
1: अपने इन दो रेडियो साथी यानी भूमि
0: और तैयबा मारूफ को, साथ ही स्वीकारिए हमारा सादर सप्रेम
1: नमस्कार।
0: तो मेरे रॉकस्टार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल गीत के साथ।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 054-222-7658।

0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ,
0: 0542227658।
2: तो मेरे दोस्तों, आज ना हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और वो है प्रसूति फिस्टुला के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये विषय एकदम नया सा लग रहा होगा, या आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है।
3: तो इन्हीं सवालों का जवाब देने हम हाजिर हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि ये दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाली प्रसूति फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
2: इसके साथ ही भूमि, सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये बताओ कि ये प्रसूति फिस्टुला आखिर होता क्या है।
3: तो दोस्तों, प्रसूति फिस्टुला एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो कठिन और लंबे समय तक प्रसव होने के कारण पैदा होती है। इसमें महिलाओं के बर्थ कैनल और ब्लेडर या रेक्टम के बीच एक एबनॉर्मल होल बन जाता है,
2: और इसी कारण से महिलाओं में लगातार यूरिन या फिर स्टूल का लीकेज भी होता रहता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
3: और ऐसे में कई बार महिलाएं शर्म और सामाजिक भेदभाव के कारण समाज से अलग थलग पड़ जाती हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें ऑन टाइम सही से ट्रीटमेंट ना मिलना, अर्ली मैरिज या फिर प्रेगनेंसी,
2: पार्टी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेन डॉक्टर्स की कमी भी इसके कारण में शामिल है साथियों। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल एक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी है।
3: बिल्कुल तैयबा, और खासकर ना ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं।
2: तो क्या भूमि, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है?
3: बिल्कुल, कई बार इन केसेस को सर्जरी द्वारा इसका सफल इलाज किया जा सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि पेशेंट्स को समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले।
2: यानी अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर वाकई कॉन्शियस हैं साथियों, तभी ट्रीटमेंट संभव हो सकता है।
3: जी दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 में इस दिन यानी 23 मई को प्रसूति फिस्टुला के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया है।
2: इसका मुख्य कारण दोस्तों ये था कि सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए और प्रभावित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन दिलाया जाए।
3: तो तैयबा, इस समस्या को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
2: देखो, इसके लिए हमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना होगा, महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके रेगुलर चेकअप का हमें ध्यान रखना होगा।
3: यानी तैयबा, अगर हर महिला को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले तो इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है।
2: बिल्कुल, और हमें ये समझना ही होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य पूरे समाज के विकास से जुड़ा होता है,
3: और हर महिला को सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
2: तो मेरे दोस्तों, ये मैसेज सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। बाकी आपका रेडियो, आपकी आकाशवाणी तो है ही, हर पल हर कदम हरदम आपके साथ।
3: और इसी साथ को कायम रखते हुए हम आप पहुंचे हैं अपनी आकाशवाणी के 90 वर्ष के करीब, जो महज दिन या साल नहीं, एक एहसास है, एक लगाव है।
2: यानी आपका स्नेह, आपका भरोसा और आपका साथ ही हमें इस मुकाम तक लाया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के इस आदर्श वाक्य के साथ आपको शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का फुल पैक परोसते रहे। बाकी आपके जो भी शिकवे गिले हों वो हमसे जरूर साझा कीजिए हमारे मेल pkldar.varanasi@gmail.com पर।
3: और तैयबा, तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि हमारे कई साथियों ने भी तो अपने कुछ खास विचार हमसे साझा किए हैं। तो क्यों ना जरा अपने उन साथियों पर भी एक नजर दौड़ा ली जाए, यानी हम सबके फेवरेट और सैटरडे स्पेशल सेगमेंट यूथ जंक्शन पर।

0: तो आपको पता है आपने डायल किया है 0542-222-1052।
1: ये क्या हुआ?
0: इंतजार खत्म हुआ।
2: सलाम सलाम
0: शुरू हो गया है आपका पसंदीदा सेगमेंट यूथ जंक्शन।
3: हेलो
4: हेलो,
3: नमस्कार, आपने कॉल किया है यूथ जंक्शन में। आपकी बात हो रही है आरजे शिवानी से।

0: मैं जान सकती हूँ मेरी बात किनसे हो रही है?
1: जिला मिर्जापुर का नदौली से शुभाकांत बोल रहा
0: शुभा
1: हूँ।
0: कान जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा है, आपके कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए, गर्मी के भी इस माहौल में आप हमें सुनना तो नहीं भूल रहे हैं?
1: नहीं सुनना नहीं बोलते हैं, हम डेली गाना चली चुके हैं हम।
0: आप श्रोता ही हैं जो हमारे शो को सुनते हैं और हम लोगों को अच्छा भी लगता है। तो शुभा कान जी, जैसा कि अभी गर्मी पड़ रही है और कहा जाता है ना कि देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अपने भारत देश में जो इम्पोर्टेंट है वो है चाय, क्योंकि हमारे भारतवासी जो है ना, उन गर्मी में चाय मिलके सुकून मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, आपको चाय पसंद है या नहीं?
1: नहीं, हमें तो चाय देखिए पसंद है, मगर हम चाय पीते हैं बहुत नियम से, चाय हम एक सुबह पीते हैं शाम को
0: अच्छा, तो चाय के
1: भी।
0: साथ अगर हम बात करें तो आपका खास कोई माहौल हो, कोई मेमोरी हो जिसको आप बताना चाहें, या चाय पे चर्चाएं जब होती हैं तो क्या चर्चाएं होती हैं, ये आप हमें बता दीजिए।
1: ये हमारे चाय पे बहुत सारे बातों पे किस्से होते नहीं, हम लोग सुनते हैं चाय पर बैठ कर।
0: अच्छा, तो कोई ऐसा पल जो चाय के साथ जुड़ा हो, कोई फनी मोमेंट या फिर कोई भावनात्मक ऐसी बात जो आप लोगों तक
1: ये
0: पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं?
1: हमारे बचपन की बात है, चाय हमारे माता जी पिलाती थी, खोया लेकर बहुत अच्छा खिलाकर पियाती थी।
0: जी जी बिल्कुल, अंगीठी पे जो चाय बनती है उसका स्वाद ही अलग होता है, और जब वो चाय अंगीठी से बनी हुई कुल्हड़ में जाती है तो, और वो जब चुस्कियों के साथ हमारे अंदर जाती है, तो उसकी जो है वो बात ही कुछ और होती है। तो आपने चाय को लेकर हमसे इतनी सारी बातें की, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि चाय, पकौड़ी और माहौल, उसके साथ साथ संगीत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आज हमें कौन से फरमाइश करना चाहेंगे?
1: तो मेरा तो दिखता है यार, मैं क्या करूं।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार। आपने यूथ जंक्शन में कॉल किया है। आपकी बात हो रही है आरजे शिवानी से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किन से हो रही है?
0: आदर्श मिश्रा, तो अभी आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है?
1: अभी हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग का प्रोग्राम है युववाणी, यूथ के लिए ये प्रोग्राम है। आप हम लोग का प्रोग्राम सुनते हैं?
0: जी मैं सुनता हूँ आपका।
1: तो खैर, आज आपने यूथ जंक्शन में कॉल किया है तो बात कर ही लेते हैं और आपसे जान लेते हैं चाय आपको कितनी पसंद है।
0: चाय मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ अपने देश में चाय ही है।
1: जी बिल्कुल। और कह सकते हैं ना, लोग कहते भी हैं कि कहीं भी देश में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भारत देश में इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में भी लोगों को चाय पीना पसंद है।
0: हाँ, चाय पीना पसंद है।
1: तो
0: कोल्ड
1: चाय से,
0: ड्रिंक से ज्यादा वरीयता अभी गर्मियों में भी चाय को ही मिल
1: चाय
0: रही।
1: को ही देते हैं हम लोग। सही बात है। तो आपकी चाय से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद, मोमेंट या कोई स्टोरी जो आप सबको बताना चाहें?
0: चाय से रिलेटेड कोई ऐसी खास स्टोरी तो नहीं है कि हाँ, बस ये है कि जब मैंने पहली बार चाय बनाना सीखा था तो
1: जी
0: उसकी एक छोटी सी कहानी है कि होता ये था कि जब हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत हमारी मम्मी रखती थी, तो होता ये था कि जब उनका व्रत पूरा होता था, शाम के टाइम पे जब पानी पिया जाता है, उसके बाद चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो
1: अच्छा,
0: कहीं ना कहीं चाय बनाना मैंने वहीं से सीखा और यही एक छोटी सी कहानी है चाय को लेके।
1: तो आपको चाय पीना पसंद भी है और चाय बनाना भी पसंद है।
0: जी
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपने हमारे यू जंक्शन में कॉल किया है तो हम चाहेंगे कि आप गाने की फरमाइश भी करें। तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहेंगे?
0: मुझे गजलें पसंद हैं।

0: हेलो।
1: नमस्कार, आपने यू जंक्शन में कॉल किया है और आपकी बात हो रही है आरजे शिवानी से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किनसे हो रही है?
0: जी, मैं प्रिया गुप्ता बोल रही हूँ। कल शो सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
1: जी,
0: मुझे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोता ही हैं जो हमारा शो सुनते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही रोज अपना प्रोग्राम करते रहें। वैसे प्रिया,
0: जी
1: आप कहाँ से
0: बिल्कुल,
1: बात कर
0: हमें
1: रही
0: भी
1: हैं हमसे?
0: मोटिवेटिव मिलता है आपकी बातें सुन के, नई चीजें सीखने को मिलती है।
1: जी, बिल्कुल, हम अपना प्रोग्राम लाते ही आपके लिए हैं कि आप जैसे युवा जो हैं उनको जानकारी मिल सके, और आपके मन में कोई भी अपने चीजों को, करियर को लेके, अपने जीवन को लेके डाउट हो तो वो क्लियर हो सके, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगता हो। वैसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमसे कहाँ से बात कर रही हैं।
0: जी, मैं बिहार से बात कर रही हूँ, बक्सर से।
1: जी, बताइए, हमारे श्रोता जो है वो बिहार तक फैले हुए हैं, ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है। तो
0: हाँ,
1: कैसी हैं आप?
0: तो ही इतना अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगती है, बातें अच्छी लगती है, तो

0: जहाँ इंटरेस्ट हो, जहाँ दिल लगे, वहां पे तो लोग कहीं से भी बातें सुन सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, आपको हम लोगों की बातें अच्छी लगती हैं और मुझे आपसे बात करके आपकी बातें अच्छी लग रही हैं।
0: जी,
1: तो कैसी हैं
0: धन्यवाद।
1: आप,
0: मैं
1: कैसी
0: तो
1: हैं?
0: बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपके बिहार बक्सर में जो है वो गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: यहाँ पे तो अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
1: जी बिल्कुल, गर्मी तो हमारे पूरे भारत देश में ही एकदम प्रचंड पे है। लेकिन एक बात मैं
0: हाँ
1: कहना चाहूँ कि इस प्रचंड गर्मी में भी ना हमें जो है, हम भारतीय जो हैं कह लीजिए, हमें चाय वो पसंद है। कितनी भी भीषण गर्मी पड़ रही हो लेकिन हम चाय पीना नहीं छोड़ेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
0: चाय पीने से गर्मी हो या कुछ भी हो, ठंडी हो, कोल्ड ड्रिंक हम जितना नहीं पीते उतना चाय के। जी हाँ, पूरे इंडिया में लवर है, मतलब कुछ हो या ना हो मैं तो पीती हूँ भाई। मुझे सादी चाय एक होती है ना, कि सादी चाय नहीं पसंद है, कुछ अच्छी उसमें इलायची हो, अदरक हो, वो थोड़ी अच्छा लगता है, और वो चीजों को और अच्छा लगता है, माहौल क्रिएट होता है। दोस्तों के साथ चाय पीजिए, कहीं कॉलेज में, हम जो
1: जी
0: कॉलेज में जाती हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर बोलती हूँ कि चलो यार चाय पी के आते।
1: जी बिल्कुल, कॉलेज का माहौल हो, दोस्त हो और हाथ में कुल्हड़ वाली चाय हो जाए तो फिर माहौल बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, चाय आपको सिर्फ बना के पीना पसंद है या बना के पिलाना भी पसंद है?
0: बना के पीने में अकेले के लिए क्या मजा है, जब दोस्तों के साथ या फैमिली वाले के साथ बैठ के उसमें बिस्किट डिप करके ना पियो, और थोड़ा हंसी मजाक ना, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है ना। दोस्तों के साथ पिए, फैमिली के साथ पिए।
1: नहीं, अमूमन होता है ना, जैसे कभी कभी घरों में होता है कि बहुत चाय प्रेमी होते हैं, हमारे पापा हो गए, भाई हो गए, तो इसको कहीं से भी आए चाय बना दो। तो कभी कभी महिलाएं जो हैं घर में वो चिड़चिड़ी से हो जाती हैं कि क्या दिन भर किचन में रह के चाय ही बनाना है। तो उस वे में मैंने पूछा है कि चाय बनाना पसंद है, अगर आपको कितने भी कप इंसान चाय बनाने को बोल दे तो आप बना लेंगी?
0: मैं तो बनाती हूँ, मेरे घर में तो आते ही लोग हैं, हमेशा बंदा रहता है चाय। मेरे घर में मेरी मम्मी है, उनको
1: जी
0: पसंद है, भाई है, उन लोग को तो कितना भी गर्मी हो भाई चाय
1: जी
0: चाहिए ही चाहिए। सुबह में भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, और एक टाइम तो शाम में भी चलता है।
1: तो चाय के साथ ऐसा कोई आपका वाक्या जुड़ा हो जो आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ?
0: हाँ, जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो अपने दोस्तों के साथ जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। अगर वो लोग नहीं भी जाए तो मैं उनको घीच घीच के लेके जाती थी कि चलो नहीं, कम से
1: जी
0: कम हम लोग एक कप चाय पीते, वो मूवमेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सब मूवमेंट मिस हो करती हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब अब तो सारे दोस्त इधर उधर चले गए हैं, लेकिन वो
1: जी
0: चीजें याद आती है।
1: बिल्कुल, चाय जब दोस्तों के साथ पी जाती है तो वो जो मोमेंट होता है वो जहन में चाय की घूंट के साथ उतर जाता है और समय के साथ वो हमें याद आती रहती है।
0: हाँ,
1: तो
0: और
1: प्रिया,
0: आप?
1: जैसा कि आपने आज कॉल किया है और चाय और बातों के साथ अगर गाना भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आज आप कौन सी फरमाइश करना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: आप अपने चॉइस से ही बता दीजिए, आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है मुझे।

0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जहां से हमें हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, जो हमारे बोलने यानी हमारी भाषा में एक मजबूत पकड़ बनाता है, यानी हमारी यूथ डायरी का शब्द।
1: तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि आज के यूथ डायरी में हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। आज का हिंदी शब्द है परिलक्षित, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना या फिर झलकना। और इसका वाक्य प्रयोग है, हमारे देश की संस्कृति की झलक गांव के रीति रिवाजों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
0: और आज का हमारा इंग्लिश वर्ड है वैरी, जिसका अर्थ होता है समाधान या फिर होशियार। वैरी मीन्स टू बी कॉशियस और ऑन गार्ड बिकॉज यू सस्पेक्ट डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, टूरिस्ट आर एडवाइज टू बी वैरी ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड मार्केट्स।
1: आज के इन दो शब्दों को जानने के बाद बारी है आज के दिन को भी जरा और जान लिया जाए।
0: वैसे भी भूमि, हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो यही कहते हैं कि बेटा, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब बात शुरू हो ही गई है तो शुरुआत से बात करेंगे, लेकिन ऊंची ऊंची बात होगी साथियों, क्योंकि आज के ही दिन वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
0: और इस फतह से उन्होंने ये साबित कर दिया दोस्तों कि अगर हमारे दिल में जज्बा हो, जुनून हो, तो कोई भी पहाड़ या पर्वत क्यों ना हो, हमारे हौसलों को चूर चूर नहीं कर सकता। और इसी का उदाहरण लेते हुए वर्ष 2008 में आज ही के दिन हमारे देश भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल यानी पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
1: और रॉकेट साइंस की इसी सफलता का दूसरा उदाहरण पेश किया गया वर्ष 2016 में, जब आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ISRO ने आंध्र प्रदेश से श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TT को लॉन्च किया।
0: वाह जी वाह, यानी देशी स्पेस शटल दोस्तों, क्या गजब उदाहरण है आज के दिन का, या यूं कहूं आज के इस आला तरीन दिन का। तो समझ रहे हैं ना मेरे रॉकस्टार यंगस्टर कि मैंने यूं ही नहीं बोला था कि ऊंची ऊंची बातें होंगी आज। तो चलिए इसी तर्ज पर अपना सीना और भी चौड़ा कर लीजिए, क्योंकि अगला गीत हमारे प्रोग्राम का समर्पित है सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों को।

0: तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों के रोजगार सूचना की। तो 18 से 32 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार यानी हमारे वो दोस्त जो एसएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
1: और दोस्तों आपको बता दें कि ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही इसकी आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: बाकी इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: और दोस्तों ऐसे मौकों को ना हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, समय पर आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें,
0: क्योंकि मेरे साथियों सही दिशा में उठाया गया कदम ही हमारी सफलता की शुरुआत होता है। और आप ही में से कुछ दोस्तों की सफलता हम तक भी आ पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्या ले लिया आपसे,
1: तो जनाब लिया ना हमने है आपका जवाब। उसके लिए पहले एक बार कल के सवाल पर नजर डाल लेते हैं। तो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, जिसका जवाब है नई दिल्ली।
0: और जो हमारे साथियों ने इनका सही सही जवाब दिया है, आप उनकी लिस्ट देखिएगा हमारी स्टोरी में। और हम आपको पहले अपना जल्दी से आज का प्रश्न बताते चलें।
1: आप सभी दोस्तों को हमारी युवाणी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, जिनका नाम अभी आप इंस्टाग्राम पर देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न सुनते चलिए। भारत में प्राइवेट सेक्टर में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया?
0: तो भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youthir वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youthirvns@gmail.com पर। और जरा एक बात सोचिए दोस्तों, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ हवा साफ हो, नदियाँ साफ बह रही हो, हर तरफ हरियाली हो, कितना बेहतरीन और शांत नजारा लगता होगा ना। लेकिन एक मिनट, अब जरा असल बात पर भी गौर कीजिए और सोचिए ये हमारी जो प्यारी धरती है ये कितना कुछ झेल रही है इस वक्त।
1: चाहे बात हो बढ़ते प्रदूषण, बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग या फिर वन्य जीवों की विलुप्तता, वास्तव में ये सब हमारी प्रकृति की चीखें हैं जिसे हम शायद अनसुना कर दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जंगलों से शेर, हाथी, हिरण, मोर और पक्षी गायब हो जाएं तो हमारी धरती कैसी लगेगी?
0: बिल्कुल सूनी और असंतुलित। ये जो हमारे वन्य जीव होते हैं ना, ये केवल हमारे जंगलों की शोभा नहीं होते बल्कि हमारे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि आज कई सारे जो हमारे वन्य जीव हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं।
1: सही कहा था अब्बा, अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां इन जानवरों को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देखेगी।
0: तो मेरे दोस्तों ये वक्त है तवज्जो देने का, अगर हमारे हमारी हमें जो हमारी प्रकृति को खुशहाल देखना है तो। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि धरती से आसमान भी हारा दिखाई दे, मुमकिन है कल को ये भी नजारा दिखाई दे। कमजोरियों का आईना अपनी को मत बना, ऐसा न हो तो वक्त का मारा दिखाई दे। तो इसके लिए आज ही संकल्पबद्ध हो जाइए कि उन बेजुबान पशु पक्षियों की हिफाजत करेंगे।
1: और सबसे पहला कदम ये है।

0: कि अपने घर के आसपास मिट्टी के बर्तनों में पानी जरूर रखें, क्योंकि इस तपती धरती में उन पशु पक्षियों की उम्मीद सिर्फ हम इंसान ही हैं।
1: तो पूरे जिंदा दिली के साथ इंसानियत दिखाइए और मेरी गुजारिश मान लीजिए, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, आज भी यही इल्तिजा करूंगी कि ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों, अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।
0: बिल्कुल, और बाकी समय का ख्याल रखते हुए अब हमें दीजिए इजाजत, अपनी रेडियो दोस्त भूमि
1: और तैयबा मारूफ को नमस्कार, जय हिंद।

अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये वाणी प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, रिले होगा हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 19वां रोजगार मेला में कई गो सरकारी विभागन आज संगठन में 51,000 से बेसी नया नियुक्त नौजवानन के नियुक्ति पत्र बटलें। मेला के आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सत ही देश भर के 47 जगहिन पर कैल गई। ए मौका पर प्रधानमंत्री कहलें कि सरकारी नौकरी लोगन के जिंदगी के बेहतर आ आसान बनौले के महत्वपूर्ण जरिया हो। श्री मोदी कहलें कि देश अपने कर्म योगियन पर भरोसा जतौले हवे आ अब इनकर जिम्मेदारी हो कि वो अपने लगन आचरण और रोजाना के काम से वो भरोसा के मान रखें और ओके औरियो मजबूत करें। प्रधानमंत्री कहलें कि पूरा दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने खातिर उत्सुक बा।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री कहलें कि हर भारतीय देश के विकसित भारत बनौले के संकल्प के साथ कार्य कर रहल है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी मिलने पर गोरखपुर के रहवैया आयुष यादव पारदर्शी चयन प्रक्रिया बदे प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापित कर ले हवे।
2: मेरा नाम आयुष यादव है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अन्य रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी प्रक्रिया रही है वो पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है।

0: उसके लिए हम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उनके मार्गदर्शन में जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान कर सके, इसके लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे हम।
1: पूरा देश से चुनल गए नया कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय आ उच्च शिक्षा विभाग जैसन कई गो अलग अलग मंत्रालय आ विभागन में आपन सेवा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आजू फिर से बढ़ोतरी भइल है। पछिला 10 दिन में तेल के दाम में ई तीसर की बेरी बढ़ोतरी भइल है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में करीब 86 पैसा और डीजल करीब 91 पैसा महंगा भइल बा। प्रदेश के महोबा जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज भइल बा। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से शहर के कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह के सतही करीब 3 गो अज्ञात समर्थकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावल गई बा। IPL क्रिकेट में आजू लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबला पंजाब किंग्स से हुई। ई मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में संझा 7:30 बजे से खेला जाये। काल ही राती सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 55 रन से हरौले रहन। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप जारी बा। कई जिलन में तापमान अजुओ 42 डिग्री सेल्सियस से बेसी दर्ज कल गई। मौसम विभाग अगला 3 दिन बदे प्रदेश के पूर्व और पश्चिम इलाकन में दिन में लू चलने के चेतावनी जारी कैले है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौले कि ये दौरान कई इलाकन में तेज धुरियाल बेरियो चलने के अनेसा बा।
2: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
1: प्रदेश के बाराबंकी जिला के फतेहपुर थाना इलाका में काल ही देर रात भयल सड़क दुर्घटना में एक परिवार के 4 लोगों के मौत हो गई, वहीं एक जने के हालत गंभीर बा। मौका पर पहुंचल पुलिस घायल लोगों के अस्पताल में भर्ती करौलिस। दुर्घटना ओ समय भयल जब बिजली कटने के नाते एक परिवार के सज्जो जने सड़क के किनारे सुतल रहले आ बेकाबू डंपर के चपेटा में आ गये। समाचार पूरा भयल, नमस्कार।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। इस सभा में रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम रात 9:30 पर आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे कलाकार होंगी बेगम अख्तर। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर धर्मेंद्र कुमार गुप्त अपनी रचनाओं के साथ होंगे। इसे आप कृपया दोबारा सुन लें। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर धर्मेंद्र कुमार गुप्त अपनी रचनाओं के साथ होंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई कृषि प्रसार और ग्रामीण विकास विषय पर डॉक्टर कल्याण घडेई से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा अमलेश कुमार पांडे के गाए लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 7:45 पर रसरंग और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में सुने जा सकते हैं। तो ये थे सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। और अब कल दिनांक 24 मई दिन रविवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात 10 बजे से आप सुनेंगे। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर गायन आप सुनेंगे। कलाकार होंगे पंडित छन्नूलाल मिश्र। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय रहेगा रात 9:30 का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अशोक खोसला कलाकार होंगे रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। पत्र के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपके पत्रों के साथ। इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे अरुण पांडे और सना सलीम।

प्रसारण समय शाम 7:31 का होगा। कृषि गत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई अन्य कार्यक्रमों के अलावा छोटे लाल पटेल व साथी के गाए लोकगीत का भी आनंद उठा सकेंगे। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र,

विश्व घटनाचक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत तो सुनेंगे। बाल गोपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे का। एक ही फिल्म से कार्यक्रम दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे। लोक रंग व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम दिन में 1:30 पर सुना जा सकता है। आज इतवार है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी दिन में 1:15 पर सुनिएगा हाकिम की पतलून, लेखिका सुधा चौधरी और प्रस्तुतकर्ता सीमा विजय। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 12 बजे से होगा, प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। आरोग्यम कार्यक्रम में 11:30 पर सुबह मनोरोग के विभिन्न प्रकार, इलाज और बचाव के उपाय विषय पर फोन इन कार्यक्रम में जानकारी देंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आपसे बातचीत की है मनु सिंह ने। बालसंग का समय रहेगा सुबह 11 बजे से। फिल्म संगीत सुबह 10:30 पर। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया का समय रहेगा सुबह 10:10 का। लोक संगीत के कार्यक्रम में छोटे लाल पटेल और साथी के गाए लोक गीत का आप आनंद उठा सकते हैं सुबह 9:50 पर। मधुरिमा का समय रहेगा सुबह 8:45 का। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का समय प्रातः 7 बजे का होगा। श्रीराम चरितमानस संगीत में पाठ आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:35 का। भक्त संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर और खेती की बातें कार्यक्रम प्रातः 6:05 पर। तो ये थे कल दिनांक 24 मई दिन रविवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम में विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे महेश कपूर और आशा भोंसले की आवाजों में फिल्म किरायेदार से। संगीत बप्पी लहरी का था और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

शोधम कार्यक्रम के अंत में ये गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म काला पत्थर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, रचना साहिर की, और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटम् राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्च स्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे सप्तचत्वारिंशत् विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्णदेशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेलमन्त्रालये गृहमन्त्रालये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये उच्चशिक्षाविभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं

0: करोति। प्रधानमंत्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणं इति विशेषरूपेण अवदत्।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमपर्यन्तं भारतं विकसितभारतं कर्तुं दृढसंकल्पेन कार्यं करोति।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान पदाधिकारिणः आईजीओटी इति कर्मयोगी मंचस्य सम्यक लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्री मोदी विश्वास प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र एकादशशतधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे षष्टिसहस्राधिकैकलक्षपदेषु नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् चत्वारि कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाब राज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु ऊनविंशतितमं आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र एकाशीत्यधिकद्विशत नवलाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते आरसीएफ संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्य इंधन मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रीय संस्थानरूपेण परिवर्तितम् अस्ति, यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। शिक्षा विभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशने मुख्यमंत्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 20,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः सुनिश्चिता भवेत्। सः अवदत् यत् नियुक्तिप्रक्रियां सुगमां कर्तुं शिक्षक नियुक्तेः अधिसूचना इदानीं प्रतिवर्षं जुलाई मासे एव प्रसारयिष्यते। अवधेयं यत् शिक्षामंत्री मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमंत्रिणः अनया घोषणया शिक्षक नियुक्ति परीक्षायाः चतुर्थ चरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सः सूचितवान् यत् शिक्षा विभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्यांकनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। पूर्वम् एषा तिथिः अद्य यावत् आसीत्। CBSE इत्यनेन उक्तं यत् गतदिनेभ्यः जालपुटे अभूतपूर्व परिचालनभारस्य तथा अनधिकृत हस्तक्षेपस्य अनेक प्रयत्नानां कारणेन जालपुटस्य कार्ये व्यवधानम् उत्पन्नम्, अतः एषः निर्णयः स्वीकृतः। CBSE इत्यनेन सूचितं यत् छात्राः स्वस्य उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्य अंकानां सत्यापनस्य अथवा पुनर्मूल्यांकनस्य अग्रिमचरणाय आवेदनं कर्तुं द्विदिनात्मकं समयं प्राप्स्यन्ति। सहैव अभ्यर्थिनः विस्तारित समयसीमायाः सम्यक् उपयोगं कृत्वा प्रक्रियां सम्पूर्णां कुर्वन्तु इति। अमेरिका देशस्य विदेशमंत्री मार्को रूबियो अद्य प्रातः चतुर्दिवसात्मके भारत

0: यात्रा प्रसंगे कोलकाता नगरं सम्प्राप्तवान्। द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं सहैव वाणिज्य रक्षा ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी हिन्द प्रशान्त व्यूहरचना इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य विस्तारार्थम् एषा तस्य प्रथमा भारतयात्रा अत्यन्तं महत्वपूर्णा वर्तते। भारते नियुक्तः अमेरिकी राजदूतः सर्जियो गोरः कोलकाता विमानपत्तने रूबियो महोदयस्य स्वागतं कृतवान्। विमानपत्तनात् आगमानन्तरं सः सद्य एव कोलकाता नगरस्थं सेंट टेरेसायाः मिशनरीज ऑफ चैरिटी इत्यस्य मुख्य कार्यालयं मदर हाउस तथा बाल आश्रम च दृष्टवान्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्च स्तरे वर्धितम्। संघटनस्य महानिदेशक ट्रेडोस अधानोम घेब्रेयेसस अवदत् यत् अस्य संक्रमणस्य संकटं सम्प्रति राष्ट्रीय स्तरे अतिवाधिकं क्षेत्रीय स्तरे अधिकं वैश्विक स्तरे च न्यूनम् इति मूल्यांकितम् अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीति प्रकरणेषु सप्त जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति यतः प्रायः 50+ संदिग्ध प्रकरणानि 77+ संदिग्ध मृत्यवः च पञ्जीकृताः सन्ति। आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् अद्य लखनऊ सुपर जॉयंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: जो राम
1: राम राम।
0: राम।
1: बिरजू भैया,
0: हाँ नंदू भैया,
1: भैया हो घाम तो बड़ा टोकटक लगत बा भैया, एकदम टनाटन टहाटह लगत ह।
0: अरे भैया लगत है कि शरीर सुनुक जाई हो।
1: भैया यह हो कि बड़ा संभरे के बा अपने खेती
0: बहुत
1: किसानी
0: भैया
1: में, तो सही हो कि निकले के तह यह घरे से भरे, लेकिन बड़ा संभर के।
0: ये भैया समय सुकाल देख के निकला। आप भरसक कोशिश रहे कि 9-10 बजे से पहले ही घरे आ जा, आखिर बात 4 बजे के बाद निकला, बहुत जरूरी रहे तबे
1: अब तो
0: निकला।
1: भैया मान ला कि कुछ दिन के बाद तो धान के बेहनों का समय आ जाए डाले के होई, लेकिन उससे पहले तमाम तरह का तैयारी बा, अपने खेत का तैयारी करे के बा,
0: देखा
1: जोताई
0: भैया,
1: करे के हो गर्मी का।
0: देखा भैया, हमारे किसान भैया लोग जोर शोर से तैयारी में लगल हों बेहन डाले के, तो हम तो कब किए भैया काम धंधा करा, लेकिन खास करके अपन भैया तर तबीयत या स्वास्थ्य पर भी
1: हाँ
0: ध्यान
1: ये
0: दा।
1: भैया हो देखा तुलसी बाबा कहलो, तुलसी धन धाम शरीर ही से, तो इस शरीर के जोन है बिरजू भैया बड़ा संभार के रखे के, यही से कुल काम करे के, खेती किसानी से ले के घर परिवार से ले के देश समाज कुल यही से करे के हो
0: ये भैया
1: देखियो।
0: देखा, अगर स्वास्थ्य के सही ना रखवा ना तो कुल काम रुक जाई। तो ऐसे सब कुछ करते हुए स्वास्थ्य के भी ध्यान देहल बहुत जरूरी बा।
1: खास तौर से गर्मी के समय में बिरजू भैया तो बड़ा ध्यान देवही के हुई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमन के देखा निकले के हो बहरे, ना निकलल जाए तो खेती किसानी चौपट हो जाए थे।
0: एकदम भैया
1: तो माँ यह ध्यान देवे के हुई कि भैया बिहाने बिहाने जितना काम कह सके पहले।
0: ठंडा में हो एकदम
1: जुड़े
0: जुड़ासी
1: जुड़े,
0: में भैया।
1: हाँ जुड़े जुड़े।
0: देखा बूढ़ो बूढ़ो लोग हमन के कहें कि देखा भैया जितना जुड़ासी में काम कैले बाना, आ देखा हो भैया ठंडा के समय में न कमो फरियाला मन से,
1: हाँ
0: आ नहीं तो
1: ये
0: बोझ बन जाला।
1: भैया होला का कि जैसे जैसे जैसे सूरज चढ़त ही ना गर्मी के घड़ी में, आ वैसे वैसे अगर मेहनत कैला तो शरीर का पसीना बहेला भैया, आ पसीना बहे का मतलब शरीर का ऊर्जा खत्म होते हैं,
0: भैया
1: ये ध्यान
0: देखा
1: देवे के।
0: पानी का भैया कमी हो जाए, ऐसे कहल जाला कि पानी भी दिन भर में कम से कम 5-7-8 गिलास पिए के चाहिए, आ
1: हाँ
0: ओके थोड़ा थोड़ा कई बार में पिया। आ देखा खास कर

0: के घाम बता से आवा तो ओके भैया कुछ देरी ले जुड़ा
1: उसके
0: जुड़ा ला
1: हाँ
0: शरीर एकदम अपने अथवा पर हो जा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तब
1: सही
0: जाके।
1: कहला कि तनी सी आराम करके जब शरीर तनी सी संतुलित हो जाए तब जो ना पानी पिया चाहे।
0: अब भरसक भैया देखा सपर जाए ना
1: हाँ
0: तो माटी के ठिल्ली रखला अब
1: हाँ
0: मटका में पानी भर के
1: भैया
0: रखा
1: भैया
0: भैया।
1: भैया ये गगरी का पानी मटका का पानी जो कहला ना वो ज़्यादा बढ़िया बा। ओके करे कुछ खाए के पिए।
0: हाँ हाँ भैया गुड़ सुड़ पी ले गुड़
1: हाँ
0: सुड़ जैसे खा ला थकान दूर हो जी। आप देखा भैया।
1: देखा खाए का भी बात कहला है ना बिरजू भैया तो ये घड़ी खाना बड़ा संभर के खाए लायक
0: बहुत
1: बा।
0: बहुत बहुत
1: जितना हो सके बिरजू भैया पंच लोग सब जने देखा पौष्टिक चीज के खाए हल्का फुल्का भोजन करे सुपाच्य रहे जोन आराम से जोन हम पच जाए। आयुर्वेद में भी बहुत लोग कहले हुए वैद्य लोग कि भाई ऐसा भोजन गर्मी में करे जोन पच जाए आराम से आ नहीं तो बड़ा समस्या हो जाए।
0: देखा हम तो कहिला कि नंदू भैया भरसक चार रोटी के भूख है ना तो दुइये खा ओकरे जगह पर खुल बल्कि कुछ खीरा तरबूज ककड़ी एकर सेवन करा आ ओहू से बढ़िया भैया देखा सतुआ जवा चना के मेराई के
1: भैया
0: पिसवा ला आ भैया नहीं एक गिलास ले ला काम करे जाए
1: भैया
0: से पहले
1: भैया भैया ये सही
0: एकदम
1: चीज कहला
0: तरोताजा शरीर रही।
1: बिल्कुल। खान पान बहुत जरूरी है गर्मी के समय में कैसन रखे के है जैसन खान पान रही वही हिसाब से हमन का स्वास्थ्य गर्मी के मौसम में रही एकर ध्यान देवे के। आ दूसर चीज ये भैया कि ये गर्मी में जो है ना कपड़ा लत्ता पे भी बड़ा ध्यान देवे के है।
0: ये भैया सपर जाए 10 रुपया मीटर लेकिन सूती पहरा
1: हाँ
0: अपने शरीर पर गर्मी भर सूती अगर पहरबा
1: भैया
0: तो चमड़ी जरीला।
1: हल्का कपड़ा रही तो समझ ला कि हवा बतास जो अंदर आवत जात रही ऐसे शरीर ठंडक रही। आ दूसरी चीज कपारे पे भैया जो ना टोपी चाहे गमछा अब तो मान ला गमछा में तनी संकुचात हुई है लोग नए जमाने का तो टोपी कम से कम जो है कपारे पे रहे। आ गाड़ी घोड़ा जे चलावत है भैया ऊ जोन है हेलमेट जरूर लगावे ऊ
0: हेलमेट
1: सुरक्षा
0: भैया आप
1: करी।
0: मुँह सुँह बांध के चला आ भरसक पैदल जे भैया चलत हो छाता उता ले ले आ ये भैया हम तो कहब कि देखा हो स्वास्थ्य के बात होते ना तो स्वास्थ्य खान पियन से तो मल्ला ध्यान रख ली भैया अगल बगल साफो सफाई पे बड़ा ध्यान देल जरूरी है।
1: ये तो सही कहला साफ सफाई तो भैया हर समय करे के है। एक तरह से समझ ला कि 12 महीना 365 दिन साफ सफाई रहे के चाहिए। आ एकरे साथे ये गर्मी के समय में भैया व्यायाम भी जरूरी है
0: बहुत बहुत
1: ठीक है। तो जोन हल्का व्यायाम रहे बहुत बहुत तगड़ा व्यायाम करे की जरूरत ना पसीना बहुत ज़्यादा निकली शरीर से तो हल्का फुल्का व्यायाम भी जोन है जरूरी है। अपने खास तौर से अपने जोन शरीर का चमड़ी है ना एकर ध्यान देवल जरूरी
0: भैया
1: है ठंडा
0: देखा
1: रहे।
0: जितने सपर जा कुछ दौड़ भाग कैला आ जितना शरीर मांगत है उतने करा दूसरे के देख के परेशान ना होखा
1: नहीं
0: जितना।
1: आइए दम पर दम भैया हो पानी सबसे बड़ चीज़ है कि पानी पियत रहा नींबुआ पानी रहे आमे का पन्ना देखा है आम का समय चलत है मौसम है तो आम का पन्ना बनाए के पिया पुदीना का चटनी खा तो ये कुल चीज़ भैया सेवन करी तो स्वास्थ्य
0: देखा
1: जो ना सही
0: भैया
1: रही।
0: डॉक्टर भैया लोग बताओ लग भैया पानी की कमी से डिहाइड्रेशन भी हो सकत है तो ऐसे जैसे कि जे के कहा जाला कालरा तो हम तो कहते भैया कि कम भोजन करा आ स्वस्थ रहा स्वस्थ रहा तब कोनो काम हाल रोजगार
1: काम
0: आगे
1: हाल रोज
0: बढ़ी।
1: बिल्कुल भैया हो। आ अपने पंचायती में बिरजू भैया अब अही पंच लोगन से और बत कही होई लेकिन है जोन सनेस है ना एक तनी सुनवा देव
0: एकदम
1: भैया।
0: भैया सुनवाए दा।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: नंदू भैया।

0: या
1: जगह
0: शनि
1: वे शनि तो हो गल, लेकिन भैया शनि साथ साथ आज के बात कही जौन बा विषय बा कृषि प्रसार और ग्रामीण विकास पर डॉक्टर कल्याण घड़ई से सतीश कुमार यादव भैया बतेवले हुए, आप पंच लोग सुना।
2: आज हमने लोग के बीच में आयल हैं प्रोफेसर कल्याण घड़ई जी की विभागा अध्यक्ष हुए कृषि प्रसार शिक्षा विभाग कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि कृषि प्रसार का है और एकर ग्रामीण विकास में कितना योगदान है, ये विषय पर भैया से चर्चा कर जाए। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है
3: जी।
2: प्रोफेसर साहब, ये बताए कि ये कृषि प्रसार हमने के ग्रामीण विकास में जो है जी, हमारे किसान भैया लोग कहा समझे कि कृषि प्रसार का है।
3: नमस्कार। कृषि प्रसार का अर्थ है किसानों तक नए कृषि तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी और सरकारी योजना पहुंचाना है और कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि किसान भाई और बहन आधुनिक तरीके से खेती कर सके और उत्पादन और आय बढ़ा सके।
2: अच्छा, ये कहाँ इतना कह लो कि महत्वपूर्ण है किसान भैया खातिर?
3: जी, हमारे देश में बहुत सारी उन्नत कृषि तकनीक, नए बीज और नए फसल एवं पशुधन सुरक्षा हमारे विभिन्न शोध संस्थान में हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित होता है। लेकिन ये सारी तकनीकियाँ, ये सारी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों और बहनों के पास समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। कृषि प्रसार शोध संस्थान और किसान भाइयों के बीच एक कड़ी है, एक माध्यम का रूप में कार्य करता है तथा उन्नत कृषि तकनीक, नए बीज और फसल एवं पशुधन सुरक्षा संबंधी समस्त जानकारी किसान भाई बहन को प्रदान करता है।
2: अच्छा प्रोफेसर साहब, आप कहते हैं कि कृषि प्रसार किसान भाइयों के बीच का कड़ी है, तो एक प्रमुख कुछ कार्यक्रम होते हैं ना जिसे किसान एक बारे में जाने, एक बारे में समझे।
3: धन्यवाद। भारत में कई एक महत्वपूर्ण कृषि प्रसार कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आपको ज्ञात हो कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान कॉल सेंटर और सारे कृषि विश्वविद्यालय में हर जगह में एक डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन कृषि प्रसार का एक एक निर्देशालय है।
2: अच्छा।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी निर्देशालय है। एतद व्यतीत आपका जितना राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश में है एक जिला स्तरीय कृषि अधिकारी होंगे, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी होंगे, इनका माध्यम से तमाम खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक ज्ञान कौशल किसान भाई और बहनों के पास हम लोग पहुंचा रहे हैं।
2: अच्छा, तो मतलब कि जो केवीके होला जिला पे या हर राज्य विश्वविद्यालय में कृषि वाला संबंधित संस्थान हो, वहाँ से किसान भैया खातिर अपन बातचीत या एक बारे में जानकारी दिया जाला। अच्छा, एक और चीज हम आपसे जानल चाहब कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानन बदे मदद कैसे करेला?
3: कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा एक संस्था है जहाँ पे हर प्रकार का शिक्षा दान होता है किसान के लिए।
2: अच्छा।
3: चाहे वो मिट्टी के बारे में हो, चाहे बीज के बारे में हो, चाहे कैसे फसल में आय हम बढ़ा सकते हैं इसका बारे में जानकारी हो, तो कृषि विज्ञान संस्थान जिसको हम कहते हैं एक संस्था है जहाँ सारे प्रकार का जानकारी आपको मिलता है। जैसे कि किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण हो, फसल का अच्छाई या बुराई के बारे में प्रदर्शन हो।
2: अच्छा।
3: मृदा परीक्षण हो और उन्नत बीज का बारे में भी जानकारी हम देते हैं और पशुपालन मत्स्य पालन का बारे में भी जानकारी देते हैं।
2: अच्छा।
3: किसान सीधे वैज्ञानिक से बात भी कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: अपना समस्या लेके वैज्ञानिक के साथ बात करके समस्या का हल भी कर सकते हैं।
2: अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बात हम आपसे जानब कि कह जाओ कि हमनी को जितना सरलता से कुछ ज्ञान आवेला, कह जाओ कि वो बहुत हमनी के भाई किसान में नहीं है जाए और हर सरलता के अपनावे खातिर हमनी का तत्पर भी रहने कि भाई सरल से सरल तरीका से हमनी के दिमाग में आ जाओ, हमनी की जानकारी हो जाओ। तो इमें का है जो लोग मोबाइल चलाओ तो घरे घरे अब तो मोबाइल हो गई, उससे का कुछ लाभ मिला था?
3: आजकल आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा जे मोबाइल हर घर में आजकल मोबाइल हो चुका है, तो हर बच्चा हर आदमी मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के माध्यम से जानकारी ले रहा है। किंतु एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है जे के किसान कॉल सेंटर है जिसका नंबर है 1800 1801551

0: 8001801551।
1: अच्छा
0: इसमें किसान कॉल करके अपना कृषि संबंधी जानकारी भी ले सकता है।
1: अच्छा, इसमें क्या क्या जानकारी ले सके ना, जैसे खाली खेती बाड़ी का कि पशुपालन वगैरह का भी हर चीज का ले सके ना?
0: जैसे आपको ज्ञात हो, जैसे हम आज रेडियो में बात कर रहे हैं, किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा, जैसे किसान बाणी हो, किसान बाणी, जैसे किसान बाणी में कृषि तकनीक, मौसम, मंडी का भाव, विशेष सलाह, सरकारी योजना के बारे में हम लोग जानकारी भी लेते हैं। ऐसे ही मोबाइल माध्यम से भी हम सरकारी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा, तब तो ये बहुत बढ़िया है। समय समय पर प्रोफेसर साहब, हम लोग भी अपने कार्यक्रम में जैसे कि विशेषज्ञ लोगों के बुलावे नहीं जा और जानकारी अपने भैया उनके सरल से सरल तरीका में देवे की कोशिश भी करे नहीं जा। तो ये तो बात आप बहुत सही कहनी है कि भाइयों में बहुत रेडियो का भी, बहुत टीवी का, बहुत तो मोबाइल फोन का भी बड़ा उपयोग हो गई है। एक और चीज हम आपसे जानना चाहब कि मोबाइल के माध्यम से अगर किसान लाभ लिया चाहते हो तो उसे कैसे ला?
0: मोबाइल का माध्यम से किसान, जैसे हमारे तमाम कृषि विश्वविद्यालय है देश में, जैसे आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, मीरठ में मीरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हमारा यही बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तमाम किसान कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे कलीपुर केबीके है, चंदौली में भी केबीके है, ये सारे केबीके में किसान के लिए जानकारी होता है। तो उसका आपको किसान अपना मोबाइल में डाउनलोड करके उसको आपका माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा, तो कोई का कोनो ऐप वगैरह भी आवेला?
0: नहीं, बहुत सारे ऐप हैं किसान के लिए, बहुत सारे ऐप्स हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे मैं कुछ किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा, जैसे किसान सुविधा एक ऐप है, एम किसान, इको किसान, एग्री ऐप, कृषि नेटवर्क, देहात, एग्रो स्टार, ऐसे तमाम ऐप हैं। ये आपको किसान अपना मोबाइल में डाउनलोड करेगा।
1: अच्छा,
0: और डाउनलोड करके
1: मैंने अपने मोबाइल में भर लें।
0: हाँ, फिर उसमें तमाम जानकारी वो ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: बीज का बारे में हो, मौसम का बारे में हो, बाजार का भाव का बारे में हो, ये समस्त जानकारी मोबाइल ऐप से भी मिल सकता है।
1: बहुत बढ़िया प्रोफेसर साहब, आप कितना हमारे किसान भैया उनके अच्छा जानकारी देते हैं कि भाई कैसे प्रसार करे के है, कैसे योजना पर सरकार हमनी के कह जाओ कि हर माध्यम से बतावत है, चाहे वो कह जाओ कि ऐप का माध्यम आप कहते हैं, चाहे फोन का माध्यम कहते हैं। एक और बात जानल चाहब कि हमनी के जब जैसे कि कृषि प्रसार का बात करते हैं, तो एक कृषि प्रसार से अगर हमनी के किसान ग्रामीण क्षेत्र में जन हुआ उन्हों के लाभ कैसे मिली?
0: जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं। ये जो किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये ग्रामीण विकास होता है क्या? ग्रामीण विकास का अर्थ ये मैं समझता हूँ, जहाँ पर किसान भाइयों का सही ढंग से आर्थिक विकास हो, समाज के विकास हो, तब उसको मानेंगे ग्रामीण विकास। जब कृषि उन्नति होता है तो किसान भाइयों का आय भी बढ़ती है, उसमें रोजगार का अवसर बनते हैं और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर उन्नति होता है। तो यही तो है ग्रामीण विकास। तो कृषि को हम भूल नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: और ये जो तमाम योजनाएं हैं, ये तमाम कंप्यूटर ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, या टीवी हो या रेडियो माध्यम से जो किसान भाइयों बहनों मुझे सुन रहे हैं, तो इसको हम ये जानकारी को काम में लगाना चाहते हैं। एक कहावत है जो मुट्ठी में दुनिया, जो मुट्ठी में दुनिया मतलब आजकल मोबाइल में सब कुछ मिल रहा है, तो किसान भाई मोबाइल में टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल में डांस भी सुन रहे हैं, ड्रामा भी सुन रहे हैं, तो थोड़ा एग्रीकल्चर का भी जानकारी सुन ले, जान ले, तभी हमें एग्रीकल्चर में, कृषि में हमें फायदा होगा।
1: अच्छा, एक और बात आपसे हम जानना चाहब कि अगर ये योजना का या कहल जाओ कि जो सरकारी योजना है कृषि प्रसार बदे, तो उकर लाभ लेल चाहत हूँ अगर किसान भैया लोग, तो उकर कैसे लाभ ले?
0: जो कृषि प्रसार सेवा का जो लाभ लेना है, तो कृषि प्रसार का जो मैं पहले आपको बताया हूँ, कई एक माध्यम है जिसके मैं बताया था आपको, जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े तमाम कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनका साथ किसान भाई जुड़े, और हमारा जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जितना कृषि अधिकारी है उनका साथ मिले, उनसे बात करे, तब जाके हमें फायदा मिलेगा। हमें घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें घर से बाहर निकल के हमें कृषि अधिकारी से मिलना है और लोगों से मिलना है, जो लोग कृषि में सफलता हासिल कर चुके हैं उनसे मिलना है, और वो तमाम पहलू पर बात करना है, बाहर जाके लोगों से बात करना है।

0: हम आपसे एक और चीज जानना चाहब कि जो सरकारी योजना आप बताओ थे, तमाम ऐप चाहे कई सारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलत है, तो एकर कहल जाओ कि कृषि प्रसार से जुड़ाव कैसे है?
1: आपको मैंने पहले बताया था, जैसे कि कृषि प्रसार एक कड़ी है, एक कनेक्शन है, एक माध्यम है जो कि सारे योजना को किसानों का पास है, गांव लोगों का पास है पहुंचाने का इसका काम है। जैसे कि आपका ज्ञात हो, एक है स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना। ये सारे योजनाओं का माध्यम से हम किसान का कल्याण कर रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश में। ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री का ये विश्वास है और ये आशा है सारे किसान भाई ये किसान सम्मान निधि का फायदा लें, आत्मा परिवार का विकास करें और रोजगार बढ़ाएं, यही इसका का मुख्यतः कार्यक्रम है।
0: और ये फसल बीमा योजना के बारे में तुमने बता दी।
1: फसल बीमा योजना, जैसे आपको मैं कहूं किसान का पास बहुत सारे फसल है, कभी पानी नहीं आ रहा है फसल खराब हो जा रहा है, कभी आप तापमान बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो फसल खराब हो जा रहा है। अगर आप फसल का बीमा करेंगे तो वो बीमा राशि आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनसे बात करें कि ये बीमा राशि आप ले सकते हैं।
0: अच्छा प्रोफेसर साहब, आप तो कहल जाओ कि विश्वविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय में जुड़ाव है, विश्वविद्यालय से लगाव है, विश्वविद्यालय से आप लोग जुड़े हैं, तो जोन अपन आज का युवा पीढ़ी है या आज का जोन महिला लोग हैं, उन लोग किसानी में क्या भूमिका है?
1: जी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम लोग अभी देखते हैं कि जितना हमारे देश के युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग खेती से भाग रहे हैं।
0: अच्छा
1: खेती हमारा बुनियाद,
0: हाँ,
1: हाँ
0: बुनियादी ढांचा कहा जाता है।
1: ढांचा कहा जाता है, तो खेती से हम लोग भागना नहीं चाहिए। इससे सरकार क्या एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है आर्या। आर्या का मतलब अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। हिंदी में ये हम कह सकते हैं जे कैसे ग्रामीण युवा वर्गों को हम कृषि में आकर्षित कर सकते हैं, उसके उसके लिए ये योजना प्रचलित है। आप अगर कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे, कृषि अधिकारी के पास जाएंगे, आपको ये सारे तकनीक के बारे में जानकारी मिल जाएगा। और आजकल डिजिटल जमाना है, मैं जैसे ही बताया था सारे चीजें तकनीक का माध्यम से हो रहा है, तो जो नए युवाएं हैं हमारे युवाएं नए तकनीक और डिजिटल साधनों का माध्यम से भी खेतीबाड़ी कर सकते हैं और अपना आय बढ़ा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे देश में 50% जो एग्रीकल्चर का कार्य है, कृषि कार्य है, वो हमारे देश के औरत लोग करते हैं। 50% जो काम है औरत लोग करते हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कृषि कृषि विज्ञान केंद्र में। वोमेन के लिए हम लोग पोषण का बारे में, प्रसंस्करण का बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं।
0: अच्छा अंत में चलत चलत आप हमारी किसान मित्रों को क्या संदेश दें?
1: चलते चलते मेरा ये निवेदन रहेगा किसान भाइयों बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक निवेदन करूंगा, आप घर से निकले और जो बाहर जाइए, ब्लॉक अधिकारी के पास जाइए, कृषि अधिकारी के पास जाइए, सीखें, जाने, परखें, प्रशिक्षण लें और तकनीक को अपनाइए। तकनीक से दूर मत जाइए, तकनीक को अपनाइए और कृषि से अपना लाभ उठाइए, कृषि से फायदा लीजिए।
0: एक प्रकार से अगर कृषि में प्रसार और प्रचार हो तो ग्रामीण भाई विकास हो सकेला। तो आप हमनी लोन के कार्यक्रम कृषि जगत में प्रोफेसर साहब आइनी, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नंदू भैया,
3: बिरजू भैया, देखा हो कृषि प्रसार और ग्रामीण विकास यह विषय पे जोन है डॉक्टर कल्याण घनेही से सतीश कुमार यादव भैया का बतकही हो गई। देखा कितना फरिया के कुल जानकारी दे देना कि का योजना कुल चलत है, जैसे किसान भाई लोग लाभ लेके लाभ लें तो
2: ओके अपने
3: का, हाँ
2: ओके अपने जीवन में अमल करें,
3: अमल करें, किसानी का विकास तो होबे करी, गांव का भी विकास जो है जैसे हुई आई कुल देखा चर्चा हो गल है। अब जो है ना अपने पंचायती में तनी सी हो जाए मनमनसान
2: एकदम, या बिना मनमनसान के पंचायती एकदम सुन रहे ले हो
3: गेले। ए मनमनसान बदे जोन है भैया ना अमलेश कुमार पांडे का जोन गवनई है, ओके अपने पंच लोगन के सुनवावल जाए।
2: छप रही है भैया, पंच लोग सुने
3: सुने।

0: नंदू
1: नंदू
0: भैया।
1: भैया देखा हो, ये अमलेश कुमार पांडे का छपरैया होगल आ अपने खेती किसानी का कितनी बढ़िया बात जो अपने
0: अरे
1: गवई के
0: भैया
1: माध्यम से
0: एकदम
1: बतो।
0: खुरपी से लेके कुल समझला कि छू छू के एकदम भैया अपने
1: भैया
0: गीत
1: भैया
0: के अथवा में फरिया के
1: एक
0: एकदम गा
1: किसान
0: देला।
1: कैसे काम करत हो अपने खेत में जाके, कुल बखान जो न भैया कर दे ना, और परिश्रम जो न किसान का भाई देखा कहीं बाया ना जात। जब फसल का उत्पादन अपन हो जाले भैया बढ़िया ना, तो मन कितना गह गह हो जाला, तब जो न ऐसा गौ नहीं एकदम सोने पे
0: अरे
1: सुहागा
0: भैया
1: हो जाला।
0: चार में एकदम चार चांद लगा दूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो न बिरजू भैया अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में

0: बता देवल जाए।
1: हाँ भैया तो
0: बिहाने जोन अपन खेती का बात है वो होई 6:05 पे।
1: अच्छा
0: आ एम्मा जोन बत कही का विषय रही वो सामयिक समय में जोन कृषि कार्य होता वो विषय पे जोन है जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: अच्छा तो भैया शाम के बेला में भैया ना 6:30 पर अपने कृषि जगत में बतकही में रही भैया, गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे कैल जाओ वो विषय पर डॉक्टर पुष्पराज शिवहरे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया बतियोले हुआ। आप
0: भैया
1: पंच लोग
0: देखा
1: खूब बढ़िया से सुनी हैं।
0: देखा एकदम सामयिक जोन है इहो बतकही का विषय बा भाई कि हमने देखा भाई आज चर्चा कैली हन अपने पंच लोगन से कि भाई गर्मी में अपने के बच बचाए के रहे के अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखे के है। तो देखा गुरु चौवा भी जोन है ना बिरजू भैया अपन परानी हुआ समझला।
1: अरे भैया देखा उनके भी दोनों टाइम खूब बढ़िया से धोवा आ साफ सफाई उनके जो जहाँ भाई गोशाला बो के रखा
0: आ समय
1: आ
0: से पानी पियावा।
1: देखा भाई पानी बहुत जरूरी। अरे देखा
0: हाँ
1: ये भैया आ अब हर्षिक भैया सफर जाना तही जो चिड़िया चुरुंग हमारे भैया उन्हों
0: उन
1: के
0: लोगन के भैया
1: घड़ा वड़ा में पानी
0: पानी
1: रख दा
0: रख
1: कुछ
0: दे
1: दाना वाना छीट दा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ ये पंच लोग एकर ध्यान दिया देखा बोलत बतियावत जो है बिरजू भैया चले का बेला हो गए तो चलत है जा पंचो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। कृषि जगत प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इन संदेशों के बाद।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये पहला गीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था कालीचरण, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और अब कुछ संदेश, उसके बाद कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में फिल्म संगीत की आप सुन रहे थे ये रचना। आशा भोसले और आनंद कुमार की आवाज़ें थीं और फिल्म का नाम था कस्मे वादे। रचना गुलशन बावरा का था और इसी रचना के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

मीडियम वेव 241.5 हज़ार मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना। ये सूचना हमें कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज से प्राप्त हुई है और सूचना के अनुसार श्रीमती बिजलौटा देवी पत्नी हंसराज यादव और ग्राम दौलतपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से शाहगंज रेलवे स्टेशन की यात्रा पर ये थीं और गुम होने का दिनांक है 17/2/2026 और ये उसी ट्रेन से लापता हो गई हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। रंग गेहुआ है और बाल लंबे काले हैं। शरीर की बनावट इकहरा है और लंबाई करीब 5 फिट है। आंख औसत है, चेहरा लंबा है और उम्र है 50 वर्ष। कोई भी सूचना इनके बारे में यदि आपके पास हो तो कृपया कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को देने का कष्ट करें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रादेशिक समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण

0: रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
6: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
1: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: यह आकाशवाणी वाराणसी है। स्वरबेला कार्यक्रम के अंतर्गत धर्मेंद्र कुमार गुप्त से उनका काव्य पाठ सुनिए।
2: मैं कुछ गजलें प्रस्तुत कर रहा हूँ। गजल का मतलब यूं है कि इस कदर होता न सूरज बेरहम, इस कदर होता न सूरज बेरहम, जो न पड़ते चांद पर अपने कदम, इस कदर होता न सूरज बेरहम, जो न पड़ते चांद पर अपने कदम। और झूठ कैसे लिख सकेंगे बोलिए, झूठ कैसे लिख सकेंगे बोलिए, है हमारे हाथ में सच की कलम, झूठ कैसे लिख सकेंगे बोलिए, है हमारे हाथ में सच की कलम। और छोड़ आए थे तुम्हें मझधार में, छोड़ आए थे तुम्हें मझधार में, हम भी साहिल पर कहाँ पहुँचे सनम, छोड़ आए थे तुम्हें मझधार में, हम भी साहिल पर कहाँ पहुँचे सनम। और लाए कितनी दूर ये कहते हुए, लाए कितनी दूर ये कहते हुए, दो कदम बस दो कदम बस दो कदम, लाए कितनी दूर ये कहते हुए, दो कदम बस दो कदम बस दो कदम। और कल थे जैसे अब नहीं वैसे हो तुम,

थे जैसे अब नहीं वैसे हो तुम, कल थे जैसे आज भी वैसे हैं हम, कल थे जैसे आज भी वैसे हैं हम, कल थे जैसे अब नहीं वैसे हो तुम, कल थे जैसे आज भी वैसे हैं हम, और आज तो दिल खोल कर रख लेने दे, आज तो दिल खोल कर रख लेने दे, कितना तरसे हैं तेरे कुर्बत को हम, आज तो दिल खोल कर रख लेने दे, कितना तरसे हैं तेरी कुर्बत को हम, और वक्त का सांचा हमें भाया नहीं, वक्त का सांचा हमें भाया नहीं, कैसे ढलते वक्त के सांचे में हम, वक्त का सांचा हमें भाया नहीं, कैसे ढलते वक्त के सांचे में हम, इस कदर होता न सूरज बेरहम, जो न पड़ते चांद पर अपने कदम। और अगली गजल का मतला है, सच उसे स्वीकार कब था, सच उसे स्वीकार कब था, आईने से प्यार कब था, सच उसे स्वीकार कब था, आईने से प्यार कब था पड़ोसी के यहाँ तो, था पड़ोसी के यहाँ तो, मेरे घर त्योहार कब था पड़ोसी के यहाँ तो, मेरे घर त्योहार कब था, और राहबर था जब न कोई, राहबर था जब न कोई, रास्ता दुश्वार कब था, राहबर था जब न कोई, रास्ता दुश्वार कब था, थे बहुत से रोग मुझ में, थे बहुत से रोग मुझ में, मन मगर बीमार कब था, थे बहुत से रोग मुझ में, मन मगर बीमार कब था, उसको हमदर्दी थी मुझसे, उसको हमदर्दी थी मुझसे, उसको मुझसे प्यार कब था, उसको हमदर्दी थी मुझसे, उसको मुझसे प्यार कब था, बन न पाया गुल कभी भी, बन न पाया गुल कभी भी, हाँ मगर मैं खार कब था, बन न पाया गुल कभी भी, हाँ मगर मैं खार कब था, और दाम है हर चीज़ के अब, दाम है हर चीज़ के अब, घर मेरा बाजार कब था, दाम है हर चीज़ के अब, घर मेरा बाजार कब था, और मैं ही था अवलंब उसका, मैं ही था अवलंब उसका, वो मेरा आधार कब था, मैं ही था अवलंब उसका, वो मेरा आधार कब था, थे यहाँ जब सारे अच्छे, थे यहाँ जब सारे अच्छे, ऐसा ये संसार कब था, थे यहाँ जब सारे अच्छे, ऐसा ये संसार कब था, सच उसे स्वीकार कब था, आईने से प्यार कब था। और अगली गजल का मतलब है, खुद में खुद को निहारता हूँ मैं, खुद में खुद को निहारता हूँ मैं, और खुद को संवारता हूँ मैं, खुद में खुद को निहारता हूँ मैं, और खुद को संवारता हूँ मैं, गर्द उतनी निकलती जाती है, गर्द उतनी निकलती जाती है, मन को जितना बुहारता हूँ मैं, गर्द उतनी निकलती जाती है, मन को जितना बुहारता हूँ मैं, और कद्र मेरी उसे नहीं कोई, कद्र मेरी उसे नहीं कोई, उस पे सब कुछ तो वारता हूँ मैं, कद्र मेरी उसे नहीं कोई, उस पे सब कुछ तो वारता हूँ मैं, और सच कहूँ खूब लुत्फ़ मिलता है, सच कहूँ खूब लुत्फ़ मिलता है यार जब तुमसे हारता हूँ मैं, सच कहूँ खूब लुत्फ़ मिलता है यार जब तुमसे हारता हूँ मैं, दोस्त मुझको दबाने लगते हैं, दोस्त मुझको दबाने लगते हैं, जब भी खुद को उभारता हूँ मैं, दोस्त मुझको दबाने लगते हैं, जब भी खुद को उभारता हूँ मैं, जाने क्यों लोग तंज करते हैं, जाने क्यों लोग तंज करते हैं, चांद को जब निहारता हूँ मैं, जाने क्यों लोग तंज करते हैं, चांद को जब निहारता हूँ मैं, खुद में खुद को निहारता हूँ मैं, और खुद को संवारता हूँ मैं। मेरी अगली गजल का मतलब है, सुकून की जिंदगी अब क्या मिलेगी, सुकून की जिंदगी अब क्या मिलेगी,
हकीकत की खुशी।

अब क्या मिलेगी, सुकून की ज़िंदगी अब क्या मिलेगी, हकीकत की खुशी अब क्या मिलेगी, नदी सी पेड़ सी घन सी हवा सी, नदी सी पेड़ सी घन सी हवा सी, कोई भी जिंदगी अब क्या मिलेगी, नदी सी पेड़ सी घन सी हवा सी, कोई भी जिंदगी अब क्या मिलेगी। उतरती थी जो आंगन में हमारे, उतरती थी जो आंगन में हमारे, हमें वो चांदनी अब क्या मिलेगी, उतरती थी जो आंगन में हमारे, हमें वो चांदनी अब क्या मिलेगी। चढ़ी होगी प्रगति की भेंट वो भी, चढ़ी होगी प्रगति की भेंट वो भी, मुझे उनकी गली अब क्या मिलेगी, मुझे उनकी गली अब क्या मिलेगी। और सिखाया था बहुत कुछ जिसने हमको, सिखाया था बहुत कुछ जिसने हमको, वही आवारगी अब क्या मिलेगी, सिखाया था बहुत कुछ जिसने हमको, वही आवारगी अब क्या मिलेगी, सुकून की ज़िंदगी अब क्या मिलेगी, हकीकत की खुशी अब क्या मिलेगी। और मेरी अगली गज़ल का मतला है, कब तक हमको छलते रहेंगे, कब तक हमको छलते रहेंगे, प्रश्न हमारे टलते रहेंगे, कब तक हमको छलते रहेंगे, प्रश्न हमारे टलते रहेंगे, तन्हा हो या साथ हो लश्कर, तन्हा हो या साथ हो लश्कर, चलते रहे हैं चलते रहेंगे, तन्हा हो या साथ हो लश्कर, चलते रहे हैं चलते रहेंगे। और हम तो जलेंगे दीपक बनकर, हम तो जलेंगे दीपक बनकर, जलने वाले जलते रहेंगे, हम तो जलेंगे दीपक बनकर, जलने वाले जलते रहेंगे। और फूलों जैसे पाँव वाले, फूलों जैसे पाँव वाले, अंगारों पर चलते रहेंगे, फूलों जैसे पाँव वाले, अंगारों पर चलते रहेंगे। सबको सिर आँखों बैठाएं, सबको सिर आँखों बैठाएं, हम ही उनको खलते रहेंगे, सबको सिर आँखों बैठाएं, हम ही उनको खलते रहेंगे, कब तक हमको छलते रहेंगे, प्रश्न हमारे टलते रहेंगे। और अगली गज़ल का मतलब, खुद अपना घर जलाना चाहता है, खुद अपना घर जलाना चाहता है, वो फितरत शायर आना चाहता है, खुद अपना घर जलाना चाहता है, वो फितरत शायर आना चाहता है, कोई तो देखता है कल के सपने, कोई तो देखता है कल के सपने, कोई गुजरा ज़माना चाहता है, कोई तो देखता है कल के सपने, कोई गुजरा ज़माना चाहता है। और जिसे हो सर झुकाने ही से मतलब, जिसे हो सर झुकाने ही से मतलब, कोई भी आस्ताना चाहता है, जिसे हो सर झुकाने ही से मतलब, कोई भी आस्ताना चाहता है। न जाने क्यों निकल आते हैं आंसू, न जाने क्यों निकल आते हैं आंसू, वो जब भी मुस्कुराना चाहता है, न जाने क्यों निकल आते हैं आंसू, वो जब भी मुस्कुराना चाहता है। मुझे देना नहीं है इम्तिहान जब, मुझे देना नहीं है इम्तिहान जब, मुझे क्यों आजमाना चाहता है, मुझे देना नहीं है इम्तिहान जब, मुझे क्यों आजमाना चाहता है। कोई तो बात होगी उसमें साहिल, कोई तो बात होगी उसमें साहिल, किसे यूं ही जमाना चाहता है, कोई तो बात होगी उसमें साहिल, किसे यूं ही जमाना चाहता है, खुद अपना घर जलाना चाहता है, वो फितरत शायर आना चाहता है। और अंत में एक गज़ल और प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब है, मेरी उम्मीद का रोशन दिया वो, मेरी उम्मीद का रोशन दिया वो, हवा से क्या अभी तक लड़ रहा हो, मेरी उम्मीद का रोशन दिया वो, हवा से क्या अभी तक लड़ रहा वो, गुज़र कैसे गया बरसे बिना ही, गुज़र कैसे गया बरसे बिना ही, तेरे एहसास का बादल घना वो, गुज़र कैसे गया बरसे बिना ही, तेरे एहसास का बादल घना वो। और तमन्ना

0: दिल के दिल में रह गई है, तमन्ना दिल के दिल में रह गई है, कभी मुझसे भी हंसता बोलता वो, तमन्ना दिल के दिल में रह गई है, कभी मुझसे भी हंसता बोलता वो, उसे रोका नहीं क्यों मैंने आए दिल, उसे रोका नहीं क्यों मैंने आए दिल, रहा मुड़ मुड़ के मुझको देखता वो, रहा मुड़ मुड़ के मुझको देखता वो। और मक्ते का शेर कि हर एक तूफान से टकराने का साहिल, हर एक तूफान से टकराने का साहिल, बता तेरा कहाँ है हौसला वो, हर एक तूफान से टकराने का साहिल, बता तेरा कहाँ है हौसला वो, मेरी उम्मीद का रोशन दिया वो, हवा से क्या अभी तक लड़ रहा वो, हवा से क्या अभी तक लड़ रहा वो।
1: अभी आप स्वर बेला कार्यक्रम के अंतर्गत धर्मेंद्र कुमार गुप्त से उनका काव्य पाठ सुन रहे थे। अब आज का स्वर बेला कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शोधो लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम कर्तव्य और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और रचना है कैफी कफील अजहर का और साथ में वर्मा मलिक का भी।

श्रोताओं, रचना कफील अज़हर और वर्मा मलिक की थी और संगीत लक्ष्मीकांत परेलाल का था और आवाज़ लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था कर्तव्य।

आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म का नाम राम बलराम, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रचना आनंद बख्शी की। कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसरंग, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

14 कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम जंजीर, रचना गुलशन बाबा का और संगीत कल्याण चैनल जी का और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म सिनेमा कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है।

शोधम इसी रचना के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं बेगम अख्तर। यह है कार्यक्रम की पहली रचना।

सुगम सुगन के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी बेगम अख्तर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जो होगा फिल्म संगीत का रसमाधुरी। 8:15 पर यह फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे।

दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।

श्रोता आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी, और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म शारदा से

शोधा मोहम्मद रफ़ी, अनुराधा की आवाज़ें, फ़िल्म का नाम शारदा और रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रसमाधुरी।

जी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीटिंग वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन ईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोता कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से रसमाधुरी। ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था शंकर हुसैन, संगीत खय्याम का था। और इस रचना के पहले आपने सुना जहरीला इंसान फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। 8:31 और 24 सेकेंड।

श्रुतम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रस माधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। भूपिंदर सिंह, महेंद्र कपूर और साथ में मोहम्मद रफ़ी और अन्य साथियों की आवाज़ों में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पहरेदार से।

बेवजह तकल्लुफ फरमा कर, समझे, बेवजह तकल्लुफ फरमा कर।

शोधन कार्यक्रम की ये अंतिम रचना थी और फिल्म का नाम था पहरेदार। मुख्य आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, भूपिंदर सिंह, अमित कुमार और आरती मुखर्जी और साथियों की थी। इसी रचना के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 241.54 मीटर, 38,242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से ठीक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग

0: 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने

0: हामिल है। हुकूमत ने वसी तर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स मुतल्लिका फरीक तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए अवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह तरीक़ेकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 200 कानकनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरे में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमेरिका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप

डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन। और अंजुमन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की यह है पहली भेंट।

श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में यह आवाज़ थी चित्रा सिंह की, और इसी रचना के साथ ही आज का अंजुमन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने वाले ही कुछ ही पलों में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड अ हाईली रिस्पेक्टेड परफॉर्मर विद ओवर 2 decades ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटिक म्यूजिक। He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Srimushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians, Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer. At the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra, he is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashvani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: In tonight's program, he will be accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on violin, Vidwan Kottayam Ji Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaalapalli R. Krishna Kumar on the ghatam.
0: Sri Chengannasheri Madhavan Nambudiri apne gayan ki shuruaat Swati Tirunal ki rachna Parama Purusham se kar rahe hain, jo raag Lalit Pancham par aadharit hai aur Khandu Chapu Taal mein nibaddh hai.
1: Sri C.P. Madhavan Nambudiri begins his vocal recital with Paramapurisham, a composition of Swadi Tirunal in the rag Lalita Panjamam, set to Kandachapu Taal.

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी। In the राग

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी

0: शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एटुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।